भी होता है। मन की चंचल वृत्तियों को पूरी तरह शांत और नियंत्रित करना ही

का भारत में मूल बंगला नाटक आलोक भट्टाचार्य का हिंदी अनुवाद दीप नारायण मिठोलिया का निर्देशन सुदर्शन कुमार का। शाम 4 बजे पिटारा में उजागर उनकी यादों के रीमा अमरापुरकर से यूनिस्तान की बातचीत का पहला भाग सुनेगा, प्रस्तुत करता है।

कृष्ण वी एम आनंद का निर्देशन रजनी शर्मा कमल का। आज बजकर 15 मिनट पर त्रिलोक 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए। 9:30 पर आपकी फनकार कार्यक्रम आपको फिर से बता दें, केंद्रित होगा अभिनेता टॉम एल्डर पर।

सानिध्य तथा अन्य ऋषि मुनियों के उपदेश सुनते हुए कुछ दिन व्यतीत किए। फिर उनकी रानी सुनैना एक दिन श्री राम की माता कौशल्या करके रथ निकला के शिविर में पहुंची।

0: कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल पंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की चौथी कड़ी।
1: संगीत सरिता के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। पंडित जी फिर एक बार आपका स्वागत है। पिछली कड़ी में हम बात कर रहे थे संगीतकार प्यारेलाल जी के बारे में। उनके द्वारा बजाया गया वॉयलिन कुछ गीतों में बड़ा मुखर रूप में हमें सुनने को मिलता है,
2: बिल्कुल।
1: तो उसके बारे में और क्या आप बताना चाहेंगे हमें?
2: देखिए, प्यारेलाल जी का एक पूरा स्कूल था फिल्म इंडस्ट्री में
1: जी।
2: और उनको जितने वायलिन प्लेयर थे फिल्म इंडस्ट्री के वो बड़े रेस्पेक्ट करते हैं। उनके पिताजी रामप्रसाद जी तो फिल्म के स्कूल में उनका बड़ा दर्जा था।

0: जो खुद अच्छा वायलिन बजाते थे और उन्होंने कई सारी फिल्मों में व्यक्तिगत सोलो पीछे दिए वायलिन के बहुत सुंदर। मुझे उनके बारे में ज़्यादा कहने का अधिकार कम है इसलिए क्योंकि मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। वो एज ए वायलिनिस्ट फिल्मों में काफ़ी पॉपुलर थे प्यारेलाल जी, और शुरू में जब ये बड़े म्यूजिक डायरेक्टर लोग थे मदन मोहन साहब, नौशाद साहब, रोशन साहब, जयदेव साहब, उस वक्त उन्होंने कुछ सोलो पीसेज बजाए हैं फिल्मों में, और वो उनमें से मदन मोहन जी का एक गीत है जो हकीकत फिल्म का गीत है
1: जी,
0: तो वो गीत आप श्रोताओं को सुनवा सकते हैं। मदन मोहन साहब के म्यूजिक डायरेक्शन में प्यारेलाल जी ने जो सोलो पीस बजाया उसमें,
1: मैं ये सोच के उसके दर से
0: एग्जैक्टली वही हूँ।

0: द्वारा बजाया सोलो पीस हमने सुना और इसी की बात हो रही थी। आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कभी फिल्मों की ओर रुख करने का मन हुआ होगा आपका?
1: जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। इनफैक्ट 1975 में मैं पूना में था, नौकरी करता था
0: जी,
1: और तबादला करा के मैं केंद्रीय विद्यालय में बम्बई में आया। उस जमाने में मेरा एजेंडा में एक बात थी कि क्लासिकल म्यूजिक मुझे सीखना चाहिए, और पंडित राम नारायण जी अकेले वो व्यक्ति थे जिनके साथ

0: सीखना चाहता था, लेकिन यूथ जो होता है वो बड़ा कंफ्यूज होता है। मैं भी जवान था उस वक्त, तो मेरा कभी कभी फिल्मों की तरफ भी अट्रैक्शन होता था, कभी क्लासिकल म्यूजिक की तरफ। उसी उदयपुर में एक दिन मैं जयदेव साहब के यहाँ जा पहुँचा, और जयदेव जी रहते थे हीरोज टॉकीज जो बम्बई में है उसके पीछे गिरली कोर्ट में। मेरे एक मित्र प्रदीप बारोट और मैं दोनों गए। प्रदीप बारोट फवाद बजाते हैं, तो उनके साथ में गया और जयदेव जी को मैंने देखा एक कमरे में चटाई बिछाए हुए। आज से मिली चाई को उनसे उनकी तुलना नहीं कर सकते आप। वो इतने बड़े लोग थे, महान बड़े जो वास्तव में कहे जाने चाहिए। एक चटाई बिछा रखी, तकिया लगा के थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं, और पास में हारमोनियम पड़ा हुआ। तो हम गए, निर्णय हमें तो दर्शन करने थे। उन्होंने मुझे सलाह दी और मेरे गुरुजी पंडित रामनारायण ने सलाह दी कि फिल्मों में अगर जाओ तो मेरे पास मत सीखना। इवन जयदेव जी ने भी यही कहा कि फिल्मों में जाओगे तो फिल्मी हो जाओगे। और ये देखिए बड़प्पन बड़े लोगों का, जयदेव जी, गुरुजी, नौशाद साहब या रोशन साहब, ये सब फिल्मों में रहे लेकिन फिल्मी नहीं हुए। और यहाँ एक बात मैं बहुत आदर के साथ श्रोताओं को और आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे गुरुजी ने फिल्मों में असंख्य पीछे बजाए और एक से एक उमदा, जिनका जिक्र आप अगले एपिसोड में करेंगे। तो जयदेव जी ने मुझे कहा कि फिल्मों में बजाओगे तो फिल्मी होके रह जाओगे। जयदेव जी इतने महान संगीतज्ञ थे कि उन्होंने जिस फिल्म में भी गीत बनाए हैं वो गीत महान हुए। एक गीत उनका सुना दीजिए, तू चंदा मैं चांदनी, रेशमा और चेहरा फिल्म का, ये मेरी तरफ से उनको आदर होगा।
1: जयदेव साहब की बात निकली है तो उन्हीं का संगीत बद की आवाज़ ये गीत अपने श्रोताओं

0: तेरा से अपने श्रोताओं पर हमने सुनवाई लता जी की आवाज बाल कवि बैरागी की रचना, और इस रचना के साथ ही वॉयलिन का विहंगम संसार इस श्रृंखला की ये कड़ी यही संपन्न हो रही है। नमस्कार।
1: वॉयलिन का विहंगम संसार। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एस एल संगारा। आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त किया।

Sevdim seni ben, sorry gibiydi.

0: si ponudí prváj. Sinele zano ka andaz. Aaj ke subah ko banaya khaas. Bole bhi hui. Har roz subah 7 baje se Vivid Bharati par.
1: सुनिए एक खुशखबरी
2: सही है ना
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का सखियों फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और

12 बजे के बीच हमें शहरी कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के।

week of the time when Akhtapa Muskuralagli is to thank you also at this and thank you Muskuralagli and we are teaching that it's time. ये गाना आपको लगे मुसाफिर फिल्म से किशोर कुमार की आवाज है शब्द का शैलेंद्र थे और सलील चौधरी ने इस गीत की धुन बनाई थी। मेरे पिछले गीत कार्यक्रम समाप्त।

तो पर खुशी खिला भी जाए, खिला भी करने का जीवन भी आपकी रहते हैं। जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर

half hour committee that is here. और रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।

चाहेंगे और जिस कारण सचिन राज के मुश्किल हालात पैदा कर दिए चंद्रबोध द्वारा, हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने चले क्योंकि वो फिल्म

0: कैलेंडरी के बोर्ड से जैसी चलती घूमती और एक और संदेह करें सुनते हैं। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इंफेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी बीयर प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ एस्टिमेंस योर डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट
1: तुरंत हो गए तो एक्टिविटी की संभावना काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें शाम 4 बजे विविध भारती पर। विविध भारती से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बोलिए जिस

के थ्रोनों मजूमदार संजीव सरिता, नई श्रृंखला शांति संजीव फिल्म।

किसी तरह से लेते आवाज़ में लगा मनुष्य मोहम्मद रफीकी थी। बोल खेले मरने में नीचे के धुन शंकर जयकिशन ने बनाई थी। आप सुनते हैं खाब फिल्म का गीत लता जसपाल सिंह की आवाज़ में और सुरेश पाटकर की आवाज़ में। ये फिल्म गीतकारों और संगीत

0: बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर इंफेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियों का बोझ
0: एड्स की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम से नहीं तो खाके तुरंत हो गए तो एसिडिटी की संभावना काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर, जिनकी शायरी दिल के बंद

0: रेडियो का एक गजल बड़ी रही थी, दो जमा दिनों का गम दूरियां सोची, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल सुनी। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा हो गया।
1: वो है शायर और गीतकार श्रुति लाजमी। इस मंगलवार सेमिनार के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार श्रुति लाजमी।
0: मुश्किल हालात पैदा कर दिए चंद्रमोती लड़का। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या चला है। मुल्क के सभी गाने से मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही

तो मैं हूँ ना बासु, और सारी ने कहा तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग कहाँ चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही जिसका पिता रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहो।

0: यादगार ग्रंथ में आपसे
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन सचिन साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। रमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन में लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी

किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे शब्दकार थे साहिल लुधियानवी, संगीतकार थे राजेश रोशन। छैला बाबू फिल्म का गीत आप आपको सुना रहे हैं। लता मंगेशकर मुकेश की आवाज में है।

की आवाज में खैला बाबू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे हसरत जयपुरी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसी गीत के साथ ही आपका हम ही राही प्यार के ये कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत। सभी दर्शकों को नमस्कार।

सेवा देश की सुरीली धड़कन आज बजने वाले हैं थोड़ी ही देर में आप समाचार।

0: mejor acá. Entonces, no estoy entiendo morita, ese medio para dejar esta necesidad de venir.
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट्स सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का

स्थान से पूर्ण बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का प्रतीक है जो मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में योग सत्र में भाग लिया। भारत में नॉर्वे के राजदूत मेयरलिन स्टेनर भी कार्यक्रम में शामिल हुई। ब्रह्म कुमारी संगठन ने ऐतिहासिक लाल किले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इसमें लगभग 20,000 लोगों ने

उप मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष विधान परिषद अध्यक्ष और सभी राज्य मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न जिलों में आयोजित योग सत्रों में भागीदारी की। आज गुजरात के भी कई जिलों में योग सत्र आयोजित किए गए। मुख्य आयोजन गांधीनगर के मनसा में हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल उपस्थित है। मुख्यमंत्री अमित शाह अहमदाबाद के प्रहलाद नगर में योग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ओडिशा में हजारों लोग योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। प्रमुख आयोजन विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के सामने किया जा रहा।

ये मिलकर तुम्हें ही होगा। तो जैसे

जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस कार्यक्रम अगले इलाके गैरसन ग्राउंड में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 26वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य लोगों को ध्यान के महत्व से अवगत कराना और मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना।

प्रणाली

अवैध किए गए हैं। परीक्षा के सुरक्षित पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों

इसीलिए प्रकार के अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा 2022 शाम 5:25

पंचायत को हाल ही में स्वच्छ और हरित गुजरात श्रेणी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये चर्चा आज सुबह 9:10 पर 100.1 पर आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर सुनी जा सकती थी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय के सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में भी बृहस्पतिवार तक कुछ स्थानों में तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्य में इस महीने की 26 तारीख तक अत्यधिक बारिश की संभावना है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अभी 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने मछुआरों को कहने की 25 तारीख तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में न जाने की सलाह दी है। श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में जर्मनी ने आयरलैंड कोर्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता में कल रात नीदरलैंड ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हॉकी को 3-0 से हराया। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर।

योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योग अभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 300 देशी फोटो INS दुर्गागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे।

भारतीय संस्कृति की एक अनमोल देन, जिसे भारत में नहीं आज पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया है। इसे कई सारे नए नए नाम दे दिए गए हैं और उन नए नामों के साथ भी योग अखिल विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। योग को कई लोग योगा भी कह देते हैं, परंतु योग तो योग है जो संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना। जोड़ना किसे? हमारी आत्मा को, हमारे शरीर को और हमारे प्रत्येक अंग को अपने आप से एक दूसरे से जोड़ देना, यही युज है। और अगर आध्यात्मिक रूप से देखें तो युज का अर्थ होता है जोड़ना। आपको आपके आध्यात्म से जोड़ देना ही योग है। और योग मनुष्य की प्रकृति और आत्मा को साथ जोड़ देता है। वहाँ दौड़ भरा जीवन है और इस जीवन में योग का महत्व अद्भुत है। योग के सूत्रों को मुख्य रूप से योग सूत्र नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसकी रचना महर्षि पतंजलि ने की थी। इस योग सूत्र में 195 सूत्र हैं, जिनमें योग के नियम, साधना, ध्यान और जीवन में संतुलित बनाने के उपाय बताए गए हैं। इसमें अष्टांग योग का वर्णन भी मिलता है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और

वर्ष पुराना है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे वेद, उपनिषद, भागवत गीता में योग का उल्लेख मिलता है। योग का उपयोग ऋषि मुनि मानसिक शांति और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए करते थे। धीरे धीरे पूरे विश्व में प्रचार हुआ और आजकल लोग योग अपनाकर स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। योग करने के अनेकों लाभ हैं। इससे शरीर स्वस्थ हो जाता है, लचीला बन जाता है। नियमित योग करने से तनाव कम होता है, मन शांत रहता है और एकाग्रता बढ़ती है। योग रोगों से लड़ने की शक्ति भी बढ़ाता है। मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसी सारी समस्याओं को नियंत्रित करने में भी योग मदद करता है। योग से कई सारी शारीरिक और मानसिक समस्याओं को भी नियंत्रित किया जा सकता है। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है। अब योग से हम किन किन बीमारियों से या किन किन समस्याओं से बच सकते हैं या उनमें लाभ मिलता है, उनमें से कुछ अगर कही जाए तो उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा, तनाव, चिंता, अनिद्रा, पेट दर्द, गठिया, अस्थमा, पाचन संबंधी समस्याएं, इन सभी समस्याओं से योग हमें बचा लेता है।

रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, मन को शांत करता है, शरीर को लचीला बनाता है। आज के काल में सभी मानसिक परेशानियों से भी उलझे हुए हैं। हर रोज एक नई समस्या समक्ष आन खड़ी होती है और अगर हम योग की साधना करते हैं तो हमारा मन, हमारा चित्त अपने आप शांत हो जाता है और कई सारी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं, जिससे हम अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट यानी हम अपने काम पर ध्यान दे सकते हैं और बहुत सरलता से कई बड़ी बड़ी परेशानियों को निपटा सकते हैं। हालांकि कई सारी बड़ी बड़ी गंभीर रोगों के लिए कहा जाता है कि केवल योग पर निर्भर ना करें, परंतु डॉक्टर की सलाह उचित इलाज के साथ अगर योग किया जाए तो लाभ अधिक मिलता है। विद्यार्थियों के लिए तो योग अति आवश्यक है, इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और पूरे विश्व में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग हमें स्वस्थ, अनुशासित, सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा देता है, इसलिए हमें प्रतिदिन योग करना चाहिए और दूसरे को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। तो कौन कौन करेगा योग, आज से विचार कीजिए, योग में जुड़ जाइए, क्योंकि ये आपके धार्मिक, आध्यात्मिक और जीवन के प्रत्येक क्षण को बहुत सरलता से जीने की राह देता है। योग रोग निरोध करता है।

0: इंटेंसिटी के साथ हर प्रगति के लिए प्रेरित करता है।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता
0: हूँ। उन्होंने कहा कि योग से हम लोग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के प्रति अधिक

taken. A कहा है कि तुम प्रक्रिया को

फेसबुक पे आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पे हमारे सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।

ऑरेंज कलर जारी किया है। विभाग के अनुसार राशि

0: 在这边吧，就没你遇到是那些很专业考过试的，这些人家就是很少的，你看到就是那么的，嗯，这是有改正的，现在就是说，你这块大的，你这块山区这个天家里嘛的那个，还是个垃圾。आप
1: किस तरह करेंगे आप नहीं क्या करा मैं थोड़ा बहुत था कि मैं कहीं कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता हूँ भाषा में मेरे अंदर था तो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बात खत्म बोल लेते हैं ये मुझे मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख भूमिका होगी
0: सुनना भूलें कार्यक्रम आपके मेहमान

थोड़ा सा रौबीला और फारूक तो बहुत बंदा बड़ा प्यारा सही। तो मैंने फिर दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही गीता पिता रोल करने में क्या मजा है। हाँ भाई

उनका गीत वसाल की आवाज में आप सुन रहे थे। अमान मलिक और प्रीतम ने इस गीत को लिखा था। अमान मलिक ने इस गीत और प्रीतम ने इस गीत से मिलकर धुन बनाई थी।

0: तुम्हारी घुमा तो रहे हैं मगर बहुत चाहिए रही है वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारे के दरबार में जब तक न उठा जाए वो आप कह सकते हैं कि ये
1: उनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को शुरू के अलौकिक संसार में ले

that can be a real good way to do it. I think the horror study should have done that. आगे की चीजों को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। इसके दिन वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में इस दिन सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक समय तक रहता है। भारतीय परंपरा में इसे आध्यात्मिक दृष्टि से आज का दिन विशेष महत्व का दिन माना जाता है। भारत की प्राचीन धरोहर और अमूल्य धरोहर के रूप में योग पूरे विश्व को स्वास्थ्य और कल्याण का मार्ग दिखा रहा है और आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाता है। भगवान शिव को प्रथम योगी माना जाता है। योग परंपरागत विस्तार होते हुए बाद में महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना करके योग के सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप प्रदान किया और उन्हें योग के जनक के रूप में सम्मान दिया जाता है। योग चित्त वृत्ति निरोधन अर्थात योग मन की चंचल वृत्तियों को शांत करने का साधन है। योग के नियमित अभ्यास से शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की अधिक को अधिक ऊर्जावान बनाया जा सकता है। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में तनाव चिंता और अवसाद खेले हुए इसे कम करने में सहायता मिलती है। मन शांत रहता है। योग से स्मरण शक्ति और कार्य करने की क्षमता में सुधार होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आत्मविश्वास बढ़ता है। अच्छी नींद आती है। सबसे महत्वपूर्ण योग हमें अपने आप से हमें खुद से मिलाता है। योग जोड़ता है हमारे तन मन और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। 2026 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग है बल्कि आयु को रोकने के लिए योग। इस थीम का उद्देश्य ये संदेश देना कि योग केवल युवाओं के लिए नहीं बल्कि हर आयु के लोगों के लिए है। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर चलिए संकल्प लेते हैं अपने स्वस्थ जीवन के लिए योग को अपनी दिनचर्या में अवश्य शामिल करेंगे। इस संकल्प को नियम पूर्वक पालन करें और इसी के साथ आप सभी को फिर से शुभकामनाएं।

0: चित्र का जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना होता उसने बहुत मदद करी है एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: इतने दिलचस्प थे कि आपको
0: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित

साथी की आवाजों में जी डॉक्टर जी को मजनू सुल्तानपुरी ने लिखा था और आनंद नंदन ने गीत की धुन बनाई थी। आज का दर्शन है पिता दिवस। हमारी संस्कृति में पिता को देवता के समान माना जाता है। पिता का स्मरण, पिता का शक्ति और प्रेरणा हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है, पूरी राह दिखाता है। पिता के स्नेह और मार्गदर्शन से ही हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। ये तो हर दिन हमें अपने माता पिता के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए और यदि कोई विशेष अवसर आए तो उस अवसर को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए।

सुंदर से सुनिधि चौहान, करीना कपूर और सत्य की आवाज में देव को उम्मीद ने इस गीत को लिखा था। अनु मलिक ने इस गीत की धुन बनाई थी। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक की

0: की आवाज में स्वानंद गिरगिरे का लिखा ये गीत आपको लेखक राम संपत का संगीत था। लापता लेडीज फिल्म का ये गाना आपने सुना। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर इन्फेक्शन जैसी पेट की समस्या इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ any GI problem is education, nutrition, exercise and when do you get self-tested and see a doctor. ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौतम मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खाके तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावनाएं काफी ज्यादा है। और अगर हम टाइम पे ना सोए 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये जैसे धुरंधर फिल्म का यह

0: आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना होता, उसने बहुत मदद करी है एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प है कि आपने पूछा,
0: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बात की,
0: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।

Father

officer.

बहुत ही अच्छी थी। मसूरी के वुडस्टॉक स्कूल में अपनी शुरुआती पढ़ाई करने के बाद टॉम अमेरिका चले गए थे। तब उनकी उम्र 18 साल की थी। 1 साल तक वो येल यूनिवर्सिटी में रहे। 19 बरस की उम्र में टॉम टीचर बनकर आ गए जगाधरी हरियाणा में। ये वो दिन थे जब वो टीचर तो थे ही एक स्कूल में जिसका नाम सेंट थॉमस स्कूल था,

divide the salt.

0: 1972 में फिल्म स्कूल ज्वाइन किया था और एक्चुअली इस जगह का सफर तब शुरू हुआ था। मास्टर से 2 साल वहाँ रहा मैं पूना फिल्म स्कूल में, बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा दिया, बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर 74 में 74 में मैं आया था, मेरे ख्याल से मई का महीना था और मैं अपनी मोटरसाइकिल पर पूना से बम्बई आया था। मुझको याद है, अच्छी तरह याद है, जेब में 44 रुपये थे और एक पुरानी मोटरसाइकिल थी मेरे पास, उसके अलावा सपनों के अलावा कुछ नहीं था मेरे पास। ये सपनों का सफ़र तब शुरू हुआ था, काफ़ी तकलीफें भी झेलनी पड़ी, आज भी झेल रहे हूँ। बस एक संघर्ष, ये बहुत जरूरी है हर आदमी के जीवन में, बस संघर्ष आज भी जारी है और एक मजेदार संघर्ष है।
1: टॉम वॉल्टन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो राजेश खन्ना बनना चाहते थे, वो एक रोमांटिक हीरो बनना चाहते थे। हालांकि फिल्मों में उनका जो करियर रहा वो बतौर हीरो नहीं बल्कि

0: पहले, लेकिन जिस तरह मैंने कहा लोग जल्दी भूल जाते हैं, खैर कोई बात नहीं, कोई शिकायत नहीं। वो रोल मुझे बहुत बहुत पसंद रहा, क्योंकि वो अपनी जान की कुर्बानी देता है अपनी बहन के लिए, तो वो एक रोल था। फिर एक फिल्म आई थी शतरंज के खिलाड़ी, मिस्टर सत्यजीत रे की, उसमें मैंने अंग्रेज का रोल किया था जरूर, लेकिन उस अंग्रेज को शेर व शायरी में दिलचस्पी थी और हिंदुस्तान से बेहद प्यार था और उर्दू में बात करता था, वो तो वो बहुत ही एक दिलचस्प किरदार था।
1: We are most grateful to His Majesty for granting us this interview. His mulaqat ke liye hum sadar alam ke behad shukrguzar. We also appreciate his gesture in disarming his soldiers. Hum fauji ki unki itni qadar karte hain. We regard it, we hope rightly, as evidence of his concern to negotiate a peaceful conclusion for his treaty.
2: Hum samajhte hain Ali Jah Ahdname ke bare mein dostana baatcheet ke liye taiyar.
1: I would like, if I may, to add a personal request to His Majesty that he please sign this treaty and formalize its abdication.
2: Hamari darkhast hai Sultan-e Alam Ahdname par dastakhat farma ke apni zimmedariyon se dastbardar ho jaye.
1: His Majesty shall have a maximum of 3 days for deliberation.
2: Is masle par dabane ke liye Sultan-e Alam ko zyada se zyada 3 din ki muhlat milegi,
1: after which the company will assume the administration of Oud.
2: Baad is muddat ke company Bahadur अवध का सारा इंतजाम अपने हाथ में ले लेगी।
1: I hope the king has understood what I've said.
2: हमने जो कुछ कहा है, उम्मीद है सुल्तानी आलम समझ गए होंगे।
1: What is this? You please tell His Majesty that I have no use for that.
2: ये रजन साहब की किसी काम की नहीं है।
1: आप हमारी दस्तार को ले सकते हैं इस दिन से कम, पर साथ नहीं ले सकते।
0: अब जहाँ तक हिंदी या हिंदुस्तानी का सवाल है, मैं तो मेरी पैदाइश तो मसूरी के यूपी के हैं। जिस जमाने में मेरी पैदाइश हुई यूपी के उस इलाके में लोग या तो हिंदुस्तानी में बात करते थे या तो उर्दू में। हिंदी तो उस इलाके में बाद में आई, मैं वेस्टर्न यूपी की बात कर रहा हूँ, मसूरी देहरादून की बात कर रहा हूँ। बचपन में मेरे वालिद साहब उर्दू लिखते भी थे, पढ़ते भी थे, बात भी करते थे उर्दू में, तो शुरू से मेरे अंदर एक बहुत ही एक दिलचस्पी रही, एक शौक रहा।

0: फोन आया था सन 72 में फिल्म इंस्टीट्यूट में। मैंने कहा मैं इस शौक को अब मतलब उसको एक अंजाम भी दूँ। मेरे दोस्त वहाँ बने मोहम्मद रफी, तो उन्होंने मुझको उर्दू सिखाना शुरू किया पुणे में 2 साल तक। फिर मैं यहाँ आया तो मेरी खुश नसीब ये रही कि उस्ताद जालिब साहब से मेरी एक मुलाकात हुई। बहुत जाने माने उस्ताद थे उर्दू के, उनके इंतकाल हुआ कुछ साल पहले। तो 5 से 6 साल तक मुसलसल मैं जालिब साहब के साथ उर्दू सीखता रहा। जालिब साहब के बारे में इस वक्त कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत ही जज्बाती मामला है, लेकिन अगर कुछ हद तक मुझको उर्दू आती है वो सिर्फ जालिब साहब की वजह से। लेकिन उर्दू का शौक मेरे अंदर इसलिए आया क्योंकि मेरे फादर जो बोलते थे लिखते थे पढ़ते थे।
1: अच्छा।
0: और उस जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि यूपी के उस इलाके में जहाँ मेरी परवरिश हुई उस जमाने में उर्दू या हिंदुस्तानी जबानें चलती थी, हिंदी बाद में। शकील बदाउनी एक शेर है अगर वो बहुत ही जाने माने शायर थे, उन्होंने लिखा कि शकील दिल हूँ मैं हूँ मोहब्बतों का राजदान, मुझे फख्र है मेरी शायरी मेरी जिंदगी से जुदा नहीं। यानी कि शायरी और जिंदगी अगर जुदा यानी कि अलग अलग रहे तो तब आदमी शायरी नहीं कर पाता, शायद शायरी लिख पाता लेकिन कर नहीं पाता।
2: आज के कार्यक्रम में आप टॉम ऑल्टर की जो रिकॉर्डिंग सुन रही है वो बहुत बरस पहले विविध भारती के एक इंटरव्यू के दौरान कही गई बातें हैं।
0: उस तरह से एक और फिल्म का नाम लूंगा मैं जरूर, उसका नाम था चमेली नंसाब, जिसमें मेरा हीरो का रोल था। वो भी बहुत ही सिंपथेटिक रोमांटिक बहादुर इंसान था वो, तो मुझे वो रोल शायद सबसे ज्यादा पसंद है। वो फिल्म भी पसंद है लेकिन वो रोल मुझे

0: मौजूदा हालात को देखते हुए और आप सब लीडरों के साथ बात करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हुकूमत जल्द से जल्द सौंप दी जानी चाहिए आपके हाथ। हमें पूरी उम्मीद है कि आपके इन फैसलों से पैदा होने वाले हालात को संभालने के लिए आप सब तैयार
1: हैं। न केवल फिल्मों में सक्रिय थे बल्कि
2: सबसे पहले सिनेमा से जुड़ गया था क्योंकि उस टाइम में टेलीविजन था लेकिन उसकी ज्यादा अहमियत नहीं थी। तो और हम आए थे बम्बई में फिल्मों में काम करने के लिए, टेलीविजन में काम करने के लिए नहीं या माइक्रो थिएटर में काम करने के लिए। तो सिनेमा से मैं जुड़ गया था और एक सपना था हीरो बनने का फिल्मों में, और कुछ एक छोटी सी हद तक

0: आम तौर पे तो टीवी को मैं ज्यादा पसंद इसलिए करता हूँ कि टीवी में एक मुसलसल आपको काम मिलता रहता है, और अगर आपकी सीरियल हिट हो गई तो फिर फिल्म हिट हो गया है, पांच साल तक लगातार तो बहुत समय आता है। तो प्रोफेशनली आजकल मैं टीवी को ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन जो एक मजा आता है काम करने में, या जब आपकी पिक्चर हिट होके रिलीज हो जाती है या रिलीज होके हिट हो जाती है, वो जो मजा है जब आपकी पिक्चर हिट हो जाती है और लोग मतलब बेशुमार लोग थिएटर हॉल में जाते हैं आपकी फिल्म देखने के लिए, तो वो जो मजा है वो सिर्फ सिनेमा में है, वो टीवी में नहीं है। उसका एक अलग मजा है फिल्मों का। और जहाँ तक थिएटर का सवाल है, वो एक नॉन प्रोफेशनल तौर पर मुझे थिएटर बेहद पसंद है, क्योंकि थिएटर में आराम है, फुर्सत है, कोई जल्दी नहीं है, और एक चीज को आप बाकायदा 3-4 महीने तक रिहर्सल कर सकते हैं, उसके बाद आप पेश कर सकते हैं, ऑडियंस के सामने बैठे हैं, तो हर चीज का एक अलग पहलू है, हर एक अलग मजा है। तो प्रोफेशनली जिस तरह मैंने कहा शायद इसमें टीवी को दूँ, और जहाँ तक मजे का सवाल है तो शायद तक इसको मैं सिनेमा को दूँ, और जहाँ तक पर्सनल एक तसल्ली या सेटिस्फेक्शन का सवाल है तब मैं शायद प्रेफरेंस दूँ थिएटर को।
1: तो आपने उन्हें अपने ही पाए गए घटने बढ़ने से फल एक्सपांड कर दिया।
2: अब और क्या करते हो दूर, क्या है कि वहां से निकलने का रास्ता में और कोई मिल नहीं रहा था, और वो बेचारा इतना परेशान था कि उसके दिमाग में इतनी की भी बात नहीं आ रही थी कि हम उस लाइफ को कभी आगे की चाह रहे थे तो कभी पीछे, जिससे उसका साया कभी बढ़ रहा था तो कभी घट रहा था।
3: आपने कभी अपने साये को घटते बढ़ते देखा?
2: मैडम, हम दूसरों के सायों को नापते रहते हैं, अपनी फिक्र कहाँ।

अंदाजा मिला कि हाँ शायद ऐसा कुछ सफर की कैरेक्टर या किरदार जो फिलहाल जो है वो अपने अपनी निजी जिंदगी के ऊपर हावी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन जरूर है कि आदमी जब कोई किरदार निभाता है तो वो अपनी निजी जिंदगी से कुछ ऐसे पहलू कुछ ऐसी बातें निकाल कर उस किरदार के अंदर डालने की कोशिश करता है। तो ये जरूर है कि केशव कल्सी का जो किरदार है, मेरे अंदर जब मैंने वो शुरू किया था कैरेक्टर, तो मेरे अंदर कुछ

0: जो बात ये मुश्किल हुआ कि उस कैरेक्टर के अंदर वही गुस्सा वही जेद उसको बरकरार रखना मुश्किल हो गया था मेरे लिए 5.5 साल तक। तो बीच में एक बार मैंने उसको थोड़ा सा ढीला भी छोड़ दिया था जानबूझकर, और मुझको लगा कि कोई नोट करेगा नहीं। लेकिन 2-3 लोग मेरे पास आए थे पब्लिक में से, और उन्होंने बाकायदा मुझको गालियाँ दी थी, ये तुमने क्या किया, चाहे तुमने नरम क्यों बना दिया। तब वापस मुझे अपने आप को बिल्कुल कस के रखना पड़ा। तो बहुत ही दिलचस्प रहा ये सफर पीछे पर सीखे का, और मेरे ख्याल से इस सफर से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझको।
1: चीनों से टॉम वॉल्टर का बड़ा गहरा लगाव रहा, जैसे कि हमने आपको बताया पाया करते थे उन दिनों में बच्चों को वो क्रिकेट भी सिखाया करते थे। अगर आप यूट्यूब पर खोजें तो आपको महान सचिन तेंदुलकर का एक बहुत पुराना लगभग शुरुआती दौर का इंटरव्यू नजर आएगा, वो टॉम वॉल्टर ने ही दिया था। खेलों से अपने जुड़ाव के बारे में टॉम ने हमें बताया था।
0: एक्चुअली खिलाड़ी बनना चाह रहा था खासकर क्रिकेट का, तो मैं उतना अच्छा खिलाड़ी नहीं था तो मैं बन नहीं पाया। स्पोर्ट्स में मतलब शुरू से बचपन से स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, यूँ कहना चाहिए कि जुनून सवार रहा मेरे ऊपर स्पोर्ट्स, आज भी है। स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट्स की दुनिया से, खिलाड़ियों से बहुत गहरा मेरे रिश्ता रहा है शुरू से बचपन से। क्रिकेट के साथ धीरे धीरे जो है मेरा रिश्ता और गहरा होता जा रहा है, और लेकिन स्कूल में ऐसा कोई खेल, ऐसा कोई स्पोर्ट था नहीं जिसमें मैंने हिस्सा नहीं।

0: career. So basketball, cricket, tennis, badminton, cross country, means सारे जो sports में मैंने कर दिया. आजकल मैं खेलता हूँ क्रिकेट और थोड़ी बहुत रनिंग भी करता हूँ. मैं लिखता भी हूँ स्पोर्ट्स के बारे में, पेपर्स में, मैगजीन्स में स्पोर्ट्स के. मैंने कई प्रोग्राम्स भी बनाए हैं टीवी के लिए और कॉमेंट्री भी मैंने दी है. तो मालूम है स्पोर्ट्स से मुझे एक हमेशा एक प्रेरणा मिलती रहती है कि स्पोर्ट्स जो है हमको बहुत कुछ सिखा सकता है जिंदगी के बारे में. जिंदगी का संघर्ष जो है किस तरह लड़ना चाहिए वो आदमी स्पोर्ट्स से सीख सकता है. तो इसलिए स्पोर्ट्स ने शुरू से लेकर आज तक मुझको बहुत सहारा दिया है, सुकून भी दिया है, राहत भी दी है और मुझको सिखाया बहुत कुछ है स्पोर्ट्स.
1: इस बारे में उन्होंने बताया,
0: थिएटर में इसलिए मैं करता हूँ, ज़्यादातर पैसे के लिए तो मैं करता नहीं थिएटर. पूरा जो सिलसिला है थिएटर का, एक आपने पहले दोस्तों के साथ प्ले को आपने जांचा, फिर आपने पढ़ा, तो उसके बाद आपने रिहर्सलें की. रिहर्सलों के अंदर इतनी तब्दीलियाँ आ जाती हैं हर चीज़ में, फिर आखिरकार एक परफॉर्मेंस भी होता है वो भी ऑडियंस के सामने. तो एक लंबा एक सफ़र है ये थिएटर का, तो मुझे वो सफ़र बेहद पसंद है. वो सफ़र आपको थिएटर इसमें सिनेमा और टीवी में नहीं मिलता है. तो वो मुझे बहुत पसंद है, लोगों के साथ दोस्ती कायम करना, नए रिश्ते पैदा हो जाते हैं रिहर्सल करते करते परफॉर्मेंस, और हर परफॉर्मेंस में कुछ नए रंग आ जाते हैं. तो ये मज़ा है थिएटर का, आपको फुर्सत मिलती है, टाइम मिलता है आपको, एक अर्सा पूरा आपको मिल जाता है. मैंने मेरे ख्याल से 15-20 प्लेस किए हैं बॉम्बे में आके. एक प्ले है जो मैं अपने दो बहुत ही अजीब दोस्तों के साथ किया करता था, नसीरुद्दीन शाह और बेंजामिन गिलानी के साथ. उस प्ले का नाम है वेटिंग फॉर गॉडो. इंग्लिश का प्ले है, बहुत ही कठिन प्ले है समझने के लिए भी और समझाने के लिए भी, लेकिन हम लोगों ने कम से कम 50 साल उसके सोच किए हैं. और वो प्ले मुझको बेहद पसंद है, वेटिंग फॉर गॉडो.
1: संगीत में अपनी दिलचस्पी के बारे में टॉम वॉल्टर ने रवि भारती को अपने एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी.
0: क्लासिकल संगीत से कोई खास मेरा रिश्ता नहीं रहा है, ना तो हिंदुस्तानी क्लासिकल ना तो इंग्लिश क्लासिकल. लेकिन हाँ, पुराने, आप तो खैर पुराने हैं, उस टाइम बनाए थे हमारे लिए पुराने फिल्मी गीत मुझे बेहद पसंद है. और जहाँ तक इंग्लिश म्यूजिक का संबंध है तो बीटल्स के गाने, फिर ईगल्स के गाने, उससे पहले एक और फोक ग्रुप था पीटर पॉल एंड मैरी, उनके गाने ये मुझे आज तक मुझे बेहद पसंद है. इंडियन म्यूजिक में हाल ही में कुछ पिछले मैं देख रहा हूँ 1-2 साल से, कहीं से मन में कहाँ से मेरे अंदर एक क्लासिकल म्यूजिक में एक दिलचस्पी पैदा हुई है जो पहले बिल्कुल नहीं थी मेरे अंदर. अभी हाल ही में मैं भोपाल में था तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का एक वहाँ पर कार्यक्रम था. तो फर्स्ट टाइम जिंदगी में मैंने ध्यान से बैठ कर किसी इस तरह के प्रोग्राम को सुना और मेरी आंखों में तो आंसू आ गए सुनते सुनते. तो शायद इस बुढ़ापे में क्लासिकल म्यूजिक में भी एक दिलचस्पी मेरे अंदर पैदा हो रही है. लेकिन अब तक जो है मेरी इंटरेस्ट रहा है या तो फोक म्यूजिक में या तो पॉपुलर म्यूजिक में, रॉक में इतना इंटरेस्ट नहीं है. तो फिल्मी गाने बस वही हमारे तीन जो सितारे हैं, किशोर जी, रफी साहब और मुकेश जी, उनके गाने तो घंटों तक या मिनट में दिनों महीनों तक सुन सकता हूँ. मैं सच बताऊँ कुछ उसके कारण क्या है मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आजकल जब गाने मैं सुनता हूँ तो मुझको 10 बार सोचना पड़ता कि आवाज़ किसकी है. शायद मेरे अंदर दिलचस्पी कम हो गई या शायद कुछ आवाज़ें जो हैं वो सेम टू सेम होती जा रही हैं. मुश्किल है, मुझको याद है हम आशिकी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जिसमें फर्स्ट टाइम कुमार शानू ने कुछ गाने पेश किए थे. मैंने उनकी आवाज़ पहली बार सुनी थी, जब नया नया था वो, तो मैंने प्रोड्यूसर से कहा कि कुमार शानू ने बहुत सक्सेसफुल रहेगा. उस फिल्म में कुमार शानू की आवाज़ मुझको बहुत अच्छी लगी. बाकी जो नए नए हैं वो क्या बताऊँ मैं, कुछ उनकी आवाज़ को पहचानने में मुझको तकलीफ, शायद इसलिए कि मैं पुराने ज़माने में खोया रहता हूँ. ये गीत मुझे इतना पसंद है कि नाम लेते वक्त भी मज़ा आता है

Christen, so

0: सुनिए शादो शादो पर
1: सुनने सुनने के लिए।

boom, they upset the

को छुपाकर हंसाया हमको। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन

acerca de dejar el presente. Hello, my name is

के काम नहीं आए तो कहते हैं सबकी डिग्री राम बनाए जो आशा कुछ

0: रहते जैन तक, तो उसमें हमें गीत तो सुनने मिलते हैं लेकिन प्रेरणात्मक बातें और कई धार्मिक ऐतिहासिक बहुत भौगोलिक यानी जानकारी मिलती है। और ये जानकारी जो स्टूडेंट होते हैं विद्यार्थी हुए उनको भी काम आती है, किसान भाइयों को भी काम आती है और जो कई ऐसे जो कामदार लोग हैं उनको भी आपके द्वारा जो जानकारी दी जाती है वो काम आती है।
1: देखा जाए तो मनोरंजन का ही
0: जी यार रेडियो ने जो दिया है जो क्रांतिकारियों को हमारे स्वतंत्र सेनानियों को जो जुस्सा बढ़ाया था उसमें गांधी जी से लेकर सुभाष चंद्र बोस जो भी है उनके जरिए से हमें आजादी मिली है और ये रेडियो का और आकाशवाणी का बहुत सहयोग रहा है। और देखा जाए तो आज भी रेडियो अकबर है, आकाशवाणी अकबर है, चाहे उसका स्थान मोबाइल ने अपने लिया लेकिन आज भी श्रोता अभी तो युवा श्रोता भी जुड़ने लगे तो वो एक सकारात्मक बाबत है।
1: और रेडियो जो है वो कभी भी किसी का नहीं हो सकता, यानी आप रेडियो काम को भी कंटिन्यू कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, खेती का काम मानो गृह अपना रसोई का कार्य कर सकती है और किसान भाई अपनी खेती का और जो भी कामदार है जो सिलाई मशीन वाला है कोई भी है रेडियो एक बाजू चलता है और अपना कार्य चलता है। और इसके लिए तो रेडियो की यानी महत्ता बढ़ जाती है दीदी, क्योंकि टेलीविजन में सामने बैठना पड़ता है और रेडियो में एक बाजू ट्रांजिस्टर रख दो तो अपने आप से काम होता रहेगा और अपने कानों में वो जो भी बातें है वो घूमती रहेगी। प्राइवेट कंपनी में सुरक्षा कर्मी हूँ और मैं बचपन से रेडियो से जुड़ा हूँ और देखा जाए तो बचपन में तो रेडियो की जो प्रसारण यात्रा थी वो कम ही सुनने मिलती थी लेकिन उसके कई जगह पर हमने रेडियो सुना है, मान लो भारत लेकिन बाहर के विदेशी प्रसारण भी रेडियो के प्रति लगाव आज भी है, पहले श्रोताओं में बहुत था और इसकी वजह से आज भी श्रोता रेडियो से जुड़े हैं। और अभी तो फिलहाल रेडियो ने अब हमारी जेब का स्थान ले लिया है, रेडियो के लिए जगह रखनी पड़ती थी।

0: जमशेदपुरी है लगातार। मैं इसके अलावा समाचार ये भी मैं आकाशवाणी जमशेदपुर के माध्यम से सुना करता हूँ और ये काफी अच्छा रहता है कि काम करते हुए मैं रेडियो का को सुनते
1: और कि जब हम रेडियो सुनते हुए अपनी नॉलेज को भी बढ़ा रहे होते हैं और मन का मनोरंजन भी कर रहे होते हैं तो ऐसे में जो भी काम आप करते हैं उसमें कई गुना निखार आ जाता होगा।
0: ये बिल्कुल ऐसे इसमें मैं तो ये समझता हूँ कि बच्चों को का जो युवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए और ही अच्छा है क्योंकि वो आकाशवाणी के समाचार को सुनते हैं तो 10 मिनट या 15 मिनट का जो भी समाचार हो उसमें उन्हें कुछ न कुछ जीके जरूर ही आ जाता है जो भी कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। आज के प्राइवेट न्यूज चैनल के दौर में जहाँ छोटी छोटी मसालेदार चीजों को दी जाती है वो किसी काम का नहीं। इसके समाचार को भी हम सुनते हैं तो कौन राष्ट्रपति कौन देश के प्रधानमंत्री या कोई ग्रेट सारी चीजें ही काफी काम किस देश के साथ क्या हमारा समझौता हुआ किस देश के साथ क्या मेरा मीटिंग हुई ये सारी चीजें आकाशवाणी के समाचार में जरूर था।

para poder romper. ठीक है मैडम, गर्मी अपना जगह में है, हम लोग अपना जगह में आए, बचाओ हमको अपना सुविधा के अनुसार करना है।

0: होता है कि यार दादाजी आप अपना नाम ले लेते हैं, गाना सुन लेते हैं, हम लोग का नाम कम से कम रेडियो में दीजिए। और मैं कहना चाहता हूँ
1: जरूर बताइए बच्चों को पसंद करते हैं।
0: आदित प्रसाद आरकाइवियर सेटिंग पढ़ता है, मुस्कान कुमारी हाई स्कूल मैट्रिक परीक्षा पास की है अभी, आशी कुमारी और अनवी कुमारी हाई स्कूल भालू बसा, और परिधि कुमारी कांसीडी हाई स्कूल। मैडम एक पुराना गाना है, फिल्म है परख फिल्म है, इसका गीतकार सलील और संगीतकार इसका सलील चौधरी है, और गाया इसे लता मंगेशकर ने है, और गाने के बोल है मिला है किसी का झुमका।

Sì, ha fatto una.

0: सर वास्तव में चाहते हैं हमारे हाउस की प्रोग्राम में।
1: मैम मैं गाना सुनना चाहूंगा तेरे बिना जिए मैं ना। ये गाना मेरी मम्मी

0: एक्टिविटी कर रहा हूँ, जैसे कि मेरे पास एक कीबोर्ड है,
1: अच्छा,
0: मैं

0: थैंक यू।
1: और मैम मैं अभी बेसिकली बिहार से हूँ, लेकिन मैं स्टडी करता हूँ। मैम मैं अभी ह्यूमैनिटी की पढ़ाई कर रही हूँ, मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड में एक विजुअली इंपेयर्ड हूँ। मैम मैं
0: आप बिहार से हैं और पानीपत की पढ़ाई कर रही हैं, और लोगों को समझने की कोशिश कर रहे हैं।
1: हाँ जी मैम। और मैम मेरी हॉबीज हैं कि न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में जानना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना और म्यूजिक में भी कंटिन्यू करना।

बेटर करने की कोशिश

आपका नंबर दिया कि आप बात करो, मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्ट है रेडियो सुनने में। मतलब मेरे पास रेडियो है नहीं, मैं ऐप से सुनता हूँ।

0: संगठन से फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े
1: हुए हैं। आप पूरे देश को भ्रमण
0: कर
1: रहे हैं। आपने खूबसूरत जगहों को भी देखा होगा।
0: जी जी, घूमने का भी कुछ कुछ जगह अवसर मिला है। इधर जगन्नाथपुरी है, उधर विशाखापट्टनम है, इधर शिमला मनाली है, काफी प्यारे प्यारे मतलब जगह रहे हैं।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है। और फिजिकली कहीं पहुंचना वो अलग ही मायने रखता है, लेकिन आप एक स्टेशन तक सुनते बहुत बड़ी बात है।
0: यही मेहनत और लगन को दीदी 22-23 साल से बरकरार रखते हैं और उसी का यह इनाम कह सकते हैं। पिछले बार भी आपसे जिक्र किया रहा होगा कि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हो चुका है।
1: अरे वाह, ये बात और हमारे लोग ये जानते हैं नाम आ गया है आपके जो ढेर सारी बदलाव आपको योगेश भाई। तो इस स्टेशन को

करके नोट करिए, नंबर होगा 2960445 और हमारा कोड है 06

स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग

मेरे कार्य पुनः परीक्षा होने जा रहा है। मेरा पूरा भरोसा है एनडीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत के विद्यार्थियों के ऊपर। आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में बैठने वाले हैं। निर्भर होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, अब निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा यह अनेक शुभेच्छा है।

सेकेंड लाइन सचिन साहब से अच्छी मैंने लिखी।

0: सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर इंफेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्या है, इन दोषों बहुत कॉमन है।
1: प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड बाय डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम होगी।
0: पेट ही बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं तो खाते तुरंत हो गए की संभावना ही काफी होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको ज्यादा होते
0: हैं। 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नहीं पा रहा वो मुझे लिखना है तो मुल्क के सभी गाने थे क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।

Thank you.

0: से जुड़े कुछ यादगार लम्हे आप सीखे।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन सचिन साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। रमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक

przerąbek. Powiem, że

तेरह फिल्म करने की बात सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में और ये फिल्म अभिनेत्री पर फिल्माया गया ये आपको बताना है श्रोता। और बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं आज की जो ये इबारत है इस विषय में हमारे श्रोता लिखते हैं कि राजस्थान की रीति की सोन ही महत्व लोक संस्कृति की रंगत और तीन से मधुसूवन को बेहद खूबसूरती से समझ

गिरफ्तार या उसके अन्य उग्रवादी भी पहुंचे गए। जंगल में तलाशी अभियान जारी। योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए।

जो योगा है आज हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया के गाइडलाइन में पहुंच दिया। कहां मैंने काम सब कि योगा के माध्यम से प्राणायाम के माध्यम से एक स्वस्थ रहा कोरोना का युद्ध हम सब।

साथ स्वास्थ्य जागरूकता वाहनों के जरिए जन जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए प्रदान किया जाए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि आज

terminó llevando su muerte que era करीब 22 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले विद्यालय में पहले से 12वीं कक्षा

ये व्यवस्था भी होगी। चमत्कारों के लिए आप हमारी वेबसाइट पीएम

0: the piano. Poi prendi il suo piano con un tubo di gelante in mano.
1: Ma questo punto non c'è il tuo valore di partita, in camera mano, parla guai, in chi di genere, parla per la via, in chi in camera mano, parte o gioco di partita alla via, o ieri, lei parla di sacche politica.
0: धनबाद में कोयला परियोजनाओं से विस्थापित हुए लोगों के लिए कपड़ा उद्योग लगाया जाएगा। स्थापित होने से 11 लोगों को रोजगार मिलेगा। बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि उद्योग की जमीन समेत कराएगा जबकि उद्योग की स्थापना निजी कंपनियां करेंगी। उन्होंने कहा

0: भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: धनबाद में 14 परियोजनाओं से विस्थापित हुए लोगों के लिए कपड़ा उद्योग लगाया जाएगा। लोगों को रोजगार मिलेगा। बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि उद्योग जमीन समेत कराएगा जबकि उद्योग की स्थापना निजी कंपनियां करेंगी। उन्होंने कहा कि इस मामले पर निजी कंपनियों और भारत गोल्ड लिमिटेड के बीच फैसला अभियान के दौरान नक्सली कमांडर समेत 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि इलाके में सर्च अभियान जारी है।
2: और सूचना प्राप्त हुई है और इसके साथ ही कुछ एक बड़ी घटना को अंजाम देने के फायदे से छापेमारी किया गया था। वहाँ पर हम लोगों को पकड़ा गया और उनके पास से 2000 मिले हथियारों के साथ 21 गोलियां भी प्राप्त हुई। पूछताछ के क्रम में द्वारा बताया गया कि इसके पास कुछ और भी हथियार और गोलियां कुल मिलाकर 28-29 गोलियां भी हम लोगों ने बरामद। उनके पास से जबकि में कुछ मोबाइल भी मिले हैं, लड़ाई के बहुत सारे पर्चे मिले हैं।
1: आसनसोल रेल मंडल में कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होगा। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि अगले 2 दिनों के लिए जैसे झाझा ट्रेनों को बंद कर दिया जाएगा। ट्रेनों का परिचालन आंशिक रूप से किया जाएगा। धनबाद जितना एक्सप्रेस, आनंद विहार डॉक्टर स्पेशल, हावड़ा एक्सप्रेस को भी नियंत्रित कर चलाया जाएगा। रेलवे ने यात्रियों से पूर्व ट्रेनों की राज्य के अधिकतर हिस्सों में आज के अगले 2 दिनों तक के लिए आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री संजय सेठ और छोटे जिला के नियमित अभ्यास का किया आह्वान।

से गए। जंगल में तलाशी अभियान जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये

experiência.

और

जैसे मीठी बेटा तथा जैसे महानदेश की आवाज में सुंदर तरीके से लिखी गई है और इसके पहले से भी मैंने आपको सुनवाया था बीस दुर्गा दास का आपसे जो घर पूछा था जहाँ आपने कुछ लिखा है बहुत प्यार से उसका लिखा लगा था एस एम के पार्टी की तरफ से एक हमारे कोटा में लिखा है घूमी थी वहाँ का रहन सहन खान पान वहाँ की सुंदरी बहुत मनमोहक था बहुत अच्छा खान पान है वहाँ के पकवान घेवर मावा कचौड़ी मिर्ची पकौड़ा गट्टे की भाजी का मजा लिया था वहाँ आपने भूमि बिरंगी बाजार की बात की हम जब छोटे थे सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ते थे तो राजस्थान गए थे मामा जी की बारात में वहाँ का तापमान पानी का बहुत घोषे थे अनोखी वेशभूषा हिंदुस्तान की गर्म जीत और कुछ विशेष स्थानों की याद अब तक मेरे मस्तिष्क में अंकित है मुख्यतः चामुंडा देवी मंदिर पुष्कर नाथ ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर जहाँ जहाँ कौन सा मेला लगता है ये अगर आप जानते हैं तो जरूर बताइए क्योंकि आपने इस मंदिर की बात की है मंदिर के दर्शन भी किए और देवी के दर्शन किए और चमकीले पत्थर अब भेज कर रखे हैं जहाँ आप मिलाए होंगे एक और छोटा हमारे लिखते हैं घूमर कभी या नृत्य भवाई नृत्य राजस्थान के लोकप्रिय नृत्य और गंगा की चूरमा के चांदनी की सब्जी गट्टे की सब्जी और बहुत से लोकप्रिय व्यंजन है यहाँ से जी हाँ तो क्या आप श्रोताओं राजस्थान का कोई सुंदर सा पंछी बता सकते हैं आप ही बता दे रहे हैं थोड़ा सर बताइए खारे पानी की कौन सी मशहूर झील है ये भी आप बता दीजिए जिसमें यहाँ इन्होंने लिखा है लेकिन मैं ये आगे नहीं पढ़ूंगी एक और छोटा लेकिन राजस्थान सबसे प्रमुख और राज्य नृत्य घूमट है इसे नृत्य का सुमौर कहा जाता है इसके अलावा राजस्थान में कई अन्य प्रसिद्ध लोक नृत्य है राजस्थान का आधिकारिक राज्य नृत्य घूमट है इसे राजस्थान के लोक नृत्यों का सुमौर और राजस्थानी संस्कृति की आत्मा कहा जाता है हालांकि राजस्थान अपने समृद्ध संस्कृति विविधता के लिए जाना जाता है इसलिए यहाँ कई अन्य

Thank you.

और सोचा लेते हैं कि आज के इंडिया सफर में राजस्थान से जाती है दिखे

hari akan menjadi jauh di hari ini. Jadi kami

的你，而他的那个应该也是受这里的压

di sapere, loro, dove vivono, dove sono calati,

apă limpede, astăzi vin și tu cu întrebare.

about it.

to be so good now.

personaggio mi pare, ah, sì, और जो हमने सुनाया था उसके लिए भी सफर कार्यक्रम आज संपन्न होता है। आप सभी प्रतिक्रियाओं के लिए सभी कमेंट्स

परचम लहरा रहा है। योग को कई लोग योगा भी कह देते हैं, परंतु योग तो योग है जो संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना। जोड़ना किसे? हमारी आत्मा को, हमारे शरीर को और हमारे प्रत्येक अंग को अपने आप से एक दूसरे से जोड़ देना। और अगर आध्यात्मिक रूप से देखें तो युज का अर्थ होता है जोड़ना। आपको जोड़ देना ही योग है, और योग मनुष्य की प्रकृति और आत्मा को एक साथ जोड़ देता है। भाग दौड़ भरा जीवन है और इस जीवन में योग का महत्व अद्भुत है। योग के सूत्रों को मुख्य रूप से योग सूत्र नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसकी रचना महर्षि पतंजलि ने की थी। योग सूत्र में 195 सूत्र हैं

अक्सर भागवत गीता में योग का उल्लेख मिलता है। पहले योग का उपयोग ऋषि मुनि मानसिक शांति और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए करते थे,

उपयोग करने के तनाव कम होता है, मन शांत रहता है और एकाग्रता बढ़ती है। योग रोगों से लड़ने की शक्ति भी बढ़ाता है। मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसी कई सारी समस्याओं को नियंत्रित करने में भी योग मदद करता है। योग से शारीरिक और मानसिक समस्याओं को भी नियंत्रित किया जा सकता है। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है। अब योग से हम किन किन बीमारियों से या किन किन समस्याओं से बच सकते हैं या उनमें लाभ मिलता है, उनमें से कुछ अगर कही जाए तो उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा, तनाव, चिंता, अनिद्रा, पेट दर्द, गठिया, अस्थमा, पाचन संबंधी समस्याएं, इन सभी समस्याओं से योग हमें बचा लेता है।

आसान करता है, शरीर को लचीला बनाता है। आज के काल में सभी मानसिक परेशानियों से भी उलझे हुए हैं। हर रोज एक नई समस्या समक्ष आन खड़ी होती है और अगर हम योग की साधना करते हैं तो हमारा मन, हमारा चित्त अपने आप शांत हो जाता है और कई सारी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं, जिससे हम अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट यानी हम अपने काम पर ध्यान दे सकते हैं और बहुत सरलता से कई बड़ी बड़ी परेशानियों को निपटा सकते हैं। हालांकि कई सारी बड़ी बड़ी गंभीर रोगों के लिए कहा जाता है कि केवल योग पर निर्भर ना करें, परंतु डॉक्टर की सलाह, उचित इलाज के साथ अगर योग किया जाए तो लाभ अधिक मिलता है। विद्यार्थियों के लिए तो योग अच्छा आवश्यक है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और पूरे विश्व में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग हमें स्वस्थ, अनुशासित, प्रेरणा देता है, इसलिए हमें योग करना चाहिए और दूसरे को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। तो कौन कौन करेगा योग, आज से विचार कीजिए, योग में जुड़ जाइए, क्योंकि ये आपकी

0: situaci se ispravlja ili situacija kada mariš se.
1: Pari pokazna nahi karta. Jo manasik svast se sharirik svast ka marg dikhata hai. Isliye yog ke vishay mein yukta chitta karma su kaha gaya hai. Yani hame kya karna chahiye kya nahi karna chahiye iska bodh.
0: इस अवसर पर राज्यपाल श्री पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है, जो स्वस्थ संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक जीवन

को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। मेरा मानना है जो उससे जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुँचे। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ कि योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में

Okay.

होती है, समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। उधर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने सत्र में भाग लिया। मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि योग को केवल वार्षिक आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के लोगों ने योगाभ्यास में भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonline.gov.in

0: राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने पर काम चल रहा है। बीकानेर में लालगढ़ साबरमती संपर्क देने के साथ उन्होंने बताया कि राजस्थान में रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
1: जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का जबकि पूरा हाथ लिया है तो हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पर लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, उसके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
0: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
2: मेरा पूरा भरोसा है एनसीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा यह अनेक अनेक शुभेच्छा है।
0: परीक्षा परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे।
2: सीबीएसई जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे सीबीएसई के 17 लाख बच्चों से लगभग 15.5 लाख बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था वो फॉर्म लगभग पूरा हो चुका है। सीबीएसई जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे

शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 100 से अधिक बसों की व्यवस्था की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के बहराइच क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, बिहार, दक्षिण कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार और तेलंगाना के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विदर्भ में बुधवार तक लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए के सामने 378 रन का लक्ष्य रखा है। गांगुला के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ए को शानदार शुरुआत मिली

शिक्षा के केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जे डी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एम डी सलीबा शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने से मुझे, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: शाम 4 बजे सिर्फ

0: कर रहा है। आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: थोड़ा अच्छा से मैं कहीं अपनी भाषा में व्यंग का उपयोग करता था, हास्य भी मैं जानता था और मैं बहुत विनोद किया करता था, तो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर। तो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बार बार व्यंग बोल लेते हैं, ये बड़ी मजे की बात है कि बाद में चल करके

别写了人，俺们的书记文件的时候，刚在那几天写写到，今天是过的冬天，买的巴拉西，这边热的巴拉，买的巴拉西，咱们老的热的这样，下午阿什尼古马的跟你写上，这几天的时候是哪地方的？咱们写的。रोशनी दीवानगन कौशला दीवानगन हिंगता दीवानगन जंगल दीवानगन और शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद बकौर नसीम परवीन रोजी बिट्टू साइसा हिमा कौशल मीनाक्षी शर्मा रवि शर्मा और अक्षय शर्मा ने विवर भारती का ये कार्यक्रम है मंच है।

छत्तीसगढ़ बरेली से इलाज एड्रेस में एड्रेस नवीन एड्रेस में और ओम प्रकाश चौहान मन प्रकाश शिव प्रकाश वेद प्रकाश चौहान की फरमाइशाई और इसी को समाचार थे बदायूं उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसूर खान सरकार विकास सक्सेना और संजिला इजाजत को और भेज के लिए पत्र मन चाहिए।

0: नाटक मृत्युहीन प्राण का दूसरा और अंतिम भाग। अरुण भट्टाचार्य के मूल बांग्ला नाटक का ये हिंदी अनुवाद है। हिंदी अनुवादक हैं दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार।
1: बेंजामिन कुछ बता रहा है, कुछ मुंह खोला उसने।
2: नहीं सर, कुछ नहीं बोलता।
1: पांच घंटे हो गए और अभी तक मुंह से बोल नहीं फूटे। दरअसल बात यह है जुडू, तुम्हारे शरीर में काले लोगों का खून भी तो कुछ कुछ मौजूद है। अभी उनके मामलों में रहम की मात्रा जरा कुछ बढ़ती जाती है।
2: क्या क्या कह रहे हैं आप सर?
1: मैं ये कह रहा हूँ कि जरा सख्ती के साथ दवा का डोज दो, अपने आप मुंह से बोल फूट पड़ेंगे।
2: मिस्टर थॉमसन, मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ?
1: कमबख्त के मुंह से एक बात तक नहीं निकल रही, बात के बदले कष्ट के सिर्फ खून निकल रहा है।
2: खून के साथ साथ बातें भी निकालनी होगी।
1: कमिश्नर साहब का हुक्म है, चल एक बार मैं खुद ही कोशिश कर देखता हूँ।
2: यस सर।

0: करते किन लोगों ने किया? इसे तो आप जरूर जानते होंगे।
1: नहीं जानता। हमारे पास ऐसी खबर है कि उस निरीह भले आदमी फिलिप्स को जान से मार डालने के लिए आप लोगों की एक गुप्त मीटिंग हुई थी। काले आदमी के लिए अचानक आप लोगों को इतना दर्द क्यों लगा?
0: ये देश की कानून व्यवस्था का प्रश्न है।
1: कानून व्यवस्था? क्या आप लोगों के प्यारे जासूस की मौत हो गई है? इसलिए तकलीफ हो रही है आपको मिस्टर थॉमसन?
0: जासूस समझकर उसे बुलेट से छल्ली बना डाला। वाह बहुत खूब।
1: बुलेट चलाना तो आप लोगों का खानदानी पेशा है। मेरा हाथ कलम से सिर्फ कविताएं लिखता है।
0: कविताएं लिखता है? क्यों क्यों प्लेटिंग डॉक्टर आपको हम से मॉम्स पर पहले युग के वक्त इसी हाथ में राइफल की लाए थे।

0: उनके पैरों में बेड़ियां डालकर हमारे देश को लूट रहे हैं। मार खाते खाते दीवारों पर लग गई है पीठ हमारी, लेकिन जिंदा रहने की खातिर अगर कोई अपनी आवाज उठाता है
1: इस तरह काम नहीं चलेगा। इसके लिए खास इंतजाम करने की जरूरत है। देखते हैं कैसे मुर्गी को बोलिए कुछ तो बोलिए मित्र बोले भाई, तो जानते हैं इसका नतीजा क्या होगा। आपके तरह लाल दो सलाखें आपके बदन के कुछ खास हिस्सों पर दबा कर रखी जाएंगी। कुछ क्या जाएगा उन हिस्सों को सलाखों से। अब आप समझ ही रहे होंगे कि वो नजारा क्या होगा। आप लोग खुद को शिष्ट समझते हैं, शिष्टाचार का

Bog će nam olimpijeti. Slavni prekoči su ne.

0: थोड़ी सी तकलीफ देने आ गए।
1: आखिर आप लोग चाहते क्या हैं?
0: बस दो एक बातें पूछना चाहते हैं आपसे।
1: उससे पहले मेहरबानी करके बताएंगे कि किस जुर्म में मेरे बच्चे को जेल की खिड़कियों के अंदर बंद किया गया है?
0: फिलिपी की हत्या के जुर्म में।
1: झूठ है, बिल्कुल झूठ है। मेरे बच्चे ने हत्या नहीं की है। क्यों झूठ मूठ मेरे बेटे को खून के इल्जाम में फंसा रहे हो?
0: हम लोग तो कानून के गुलाम हैं मिसेस वेल्स।
1: आप लोगों के कानून तो हमारे जैसे काले लोगों की गर्दन दबोचने के लिए है।
0: ओह नो नो नो नो, ये आप लोगों की गलत धारणा है।
1: अच्छा सर बहादुर, क्या आप लोग कोई ऐसी दवा नहीं दे सकते जिसे बदन पर लगाने से हमारे शरीर के रंग भी सफेद हो जाए?
0: सुन रहे हो जिडू, मिसेस मोलाइज क्या फरमा रही है?
2: हाँ सर, सुन रहा हूँ। अच्छा मान लीजिए अगर आप लोग सफेद चमड़ी के होते तो क्या करते मिसेस मोलाइज?
1: तो हमारे लिए कांटे वाले तारों से घिरा बांधुस्तान बनाने की जरूरत नहीं पड़ती।
0: सर लगता है बेंजामिन ने अपनी माँ को भी तैयार कर पक्का कर दिया है। अरे वो तो करेगा ही जुड़ू, वही तो खून खराबा करके आने के बाद हाथ धोने के लिए पानी कौन देगा?
1: आप लोगों को जो कुछ भी कहना है कह डालिए और मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए, मुझे खुशी होगी।
0: ओह यस यस यस, हम सब इतना जानना चाहते हैं क्या आपका बेटा बेंजामिन कई लोगों के साथ मिलता जुलता था?
1: बहुत के साथ, उसके बहुत से दोस्त हैं।
0: हाँ, बहुत से दोस्तों को तो हम पहचानते हैं, खास दोस्तों में जैसे समझिए

0: की आवाज लगती है।
1: मेरे पड़ोसी दोस्त लगी है।
0: जरा उसे बुलाइए।
1: क्यों, उसकी क्या जरूरत है?
0: घर में आपके सिवा और तो किसी को देखा नहीं इसके पहले, इसीलिए आप जरा हमें ये भी देखने की जरूरत है कि इस घर में किस किस का आना जाना है। क्या नाम है तुम्हारा?
1: जिमी पैराम्बा।
0: क्या करती हो?
1: कॉलेज में पढ़ती हूँ।
0: सर लगता है इसे कहीं देखा है।
1: कभी सड़क बाजार या कॉलेज जाते समय देख लिया हो?
0: ऐसे नहीं, कहीं और देखा है। याद आया, अभी कुछ दिनों पहले एक सुनसान पार्क में तुम्हारे साथ हमारी मतलब हम दोनों के साथ तुम्हारी मुलाकात हुई थी।
2: वहाँ चुपके प्रेम करने या किसी से मिलने गई थी? क्यों, गई थी ना?
0: क्वाइट इंटरेस्टिंग अफेयर। अच्छा मिस पैराम्बा, तुम जरूर बेंजामिन को जानती हो? अच्छा तो फिर उसकी कविताओं को भी जरूर चाहती होंगी?
1: जी हाँ, चाहती हूँ।
0: पर क्या तुम ये जानती हो कि बेंजामिन जिस हास्य कविताएं लिखता है उसी हाथ से आदमी का खून भी करता है?
1: जी नहीं, मुझे यकीन नहीं है इस बात पर।
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मुझे भी यकीन नहीं है, पर कुछ चारा भी तो नहीं है, इसीलिए मुझे जरूरत है तुम्हारी।
1: मेरी? अब इसे भी इससे क्यों गठित रहे हैं आपके पास?
0: प्लीज मिस्टर मोराय, जिमी तुम ये जरूर चाहोगे कि बेंजामिन बेगुनाह साबित होकर तुम्हारे बीच वापस आ जाए? कह रहा हूँ मतलब ये चाहता हूँ जो तुम्हारे बेंजामिन को तुम्हारे पास ही वापस ला देगी।
1: मेरे पास आओ। नहीं, वो क्यों जाएगी?
0: ओहो, डरने की कोई बात नहीं है।
1: मैं कहाँ जाऊंगी?
0: मेरे साथ?
1: नहीं
0: सर, मैं ये कह रहा हूँ। डरने की कोई बात नहीं है, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ बेंजामिन का रिश्ता किस ढंग का है। सामने तो पूछा नहीं जा सकता।
1: नहीं, वो नहीं जाएगी। जिमी तुम अंदर जाओ।
0: अरे

0: निकारों की वसूलने की चेष्टा है। कौन? नहीं, कुछ नहीं सोच
1: रहा हूँ। जरूर
0: कुछ ना कुछ आप सोच रहे हैं ना? ये भी क्या आप लोगों का ऑर्डर है?

0: こは何やったんしてもらえる。
1: ああ、万里で、死に行けばれね。
0: くっつけてもらえ、人生あっきもらかっていう。うん、
1: ジミー？
0: じゃあ、ジミー？あっきなるわ。
1: ジミーさんやけんなじゃねえ。
0: ちょっと見つかりたい、あっきからんてやったくねかっきゅ
1: うけん。आप लोग मेरे व्यक्ति जब जीवन की खोज लेने आए हैं,
0: मिस्टर बोले, आज मैंने ये तय किया है कि आपको कोई जबरदस्त सरप्राइज,
1: सरप्राइज,

本当はあそこに来てくれてたのあるから。はい。こっちは今だけ言え。

थॉमसन, मेरे कमजोर पक्ष पर चोट कर आप लोग सोचते हैं कि मैं

विक्टोरिया की बोखा सरकार से पुत्र की प्राण रक्षा के लिए आवेदन किया था, लेकिन सरकार ने उस आवेदन को ठुकरा दिया है। दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत कवि बेंजामिन मोरेलिस को दी गई मौत की सजा को माफ कर देने के लिए विश्व के अनेक राष्ट्र नेताओं ने प्रिटोरिया सरकार से निवेदन किया है।

है अपने ऊपर, मेरा जीवन गौरवमंद है। जितना जीवन मैंने भोगा मुझे गर्व है उस जीवन पर। मातृभूमि के मस्तक पर लो मैंने अपने शुद्ध रक्त से तिलक किया है। बंदी कहती लौह सलाखा मेरे प्राणों को बंधन में रख सकने में कभी नहीं हो सकती। निकल पड़ूं

1985 से सारे विश्व के जनमत को ठुकराकर जोहान्सबर्ग के केंद्रीय कारागार में स्वाधीनता संग्राम के सिपाही रंगभेद नीति का विरोध करने वाले

मृत्यु में है सार भक्त का, सार जीवन का। मृत्यु देती प्रेरणा प्रतिकार करने की।

0: की यादों के और ये उजाले रास्ते के लिए मौजूद है उसकी रीमा अब्राहम का बहुत बहुत स्वागत रीमा जी।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
0: पिताजी की यादों के उजाले बांटने के लिए आकाशवाणी के स्टूडियो में विविध भारती के स्टूडियो में आते हुए सही फील है वो क्या है?
1: आकाशवाणी या विविध भारती के स्टूडियो में मैं जब भी आती हूँ

0: चली जाती हूँ, बिकॉज हमारी पूरी फैमिली का आकाशवाणी रोहित भारती बहुत ही करीबी संबंध रहा है। तो मेरी माँ भी रेडियो आर्टिस्ट थी, अलग अलग ड्रामा फिल्म्स में उन्होंने काम किया था ऑल इंडिया रेडियो के लिए। मैं खुद बचपन में मराठी दो शो कर चुकी हूँ जिसमें मैं वॉइस आर्टिस्ट थी। और सबसे जरूरी बात कि 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी ना, वो उन्होंने आकाशवाणी के साथ की है
1: सरबरी में।
0: तो वो

0: चुकी थी, दो बच्चियां थी, तो इसलिए पिताजी को दिखाने के लिए कि नहीं नहीं मैं कमा रहा हूँ, उन्होंने वो जॉब की थी।
1: कितना मजेदार कि वो मराठी में बोलते होंगे आकाशवाणी का ये प्रभारी
0: थी। और उनकी आवाज तो वैसे भी उनकी स्ट्रेंथ थी, आज भी है, मतलब आज भी जब भी हम आवाज सुनते हैं तो फैमिली मेंबर्स की तो हमारी आंखें भर आती है। उस वक्त तो उनकी ताकत बहुत ही ज्यादा थी उस आवाज की, तो उनके बहुत सारे फैंस हो गए थे। और फिर ऐसे हुआ कि एक पॉइंट पे मम्मी को ऐसे लगने लगा कि अरे अभी बहुत ही ज्यादा फैंस हो रहे हैं इनके, विशेषतः लड़कियां, तो ये अगर छोड़ रहे हैं जॉब को ठीक ही बात
1: है। वाह वाह वाह, ये रेडियो में आना उनका कैसे हुआ था, इसकी कोई कहानी हो तो वो।
0: हाँ, तो उसमें बात ऐसी थी कि जैसा मैंने कहा कि पापा बिल्कुल ही पूरी तरह से वो थिएटर, रंगमंच, नाटक, इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। उनके दिमाग में 24 घंटे वही चलता था। और माँ की और उनकी जो मुलाकात हुई थी वो भी नाटक के दौरान ही हुई थी। मतलब मजे वाली बात यह है कि वो बचपन से, जैसे हम लोग कहते हैं किंडरगार्टन से, वैसे बचपन से वो एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में पढ़े। लेकिन कॉलेज में, क्योंकि माँ बहुत होशियार स्कॉलर, उस जमाने में जो कंसेप्ट थी स्कॉलर की, वैसी स्कॉलर थी, तो इसलिए उसने साइंस लिया हुआ था और पापा ने आर्ट्स लिया था। तो कॉलेज में भी वो एक ही कॉलेज में थे। तो जब थिएटर करना शुरू किया तब उन्हें लगा नहीं नहीं नहीं ये सुनंदा ने करना चाहिए हमारे साथ काम, तो इसलिए उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी। और फिर वो थिएटर में मम्मी जो घुस गए, तो फिर साइंस वायंस सब पीछे रह गया। और

के लिए पापा के जो पिताजी थे वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे अहमदनगर में, जो आज अहिल्या नगर कहा जाता है जिसे। तो उनका ऐसा कुछ नहीं था कि बाबा तू पहले नौकरी कर, पैसे कमा, फिर तेरी शादी करता हूँ। उन्हें पता चला कि ये सुनंदा, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो इनकी शादी करा देना सबसे अच्छी बात। आई थिंक पापा 23-24 साल के थे और मम्मी 23 साल की थी। उन दोनों में 6 महीने का ही अंतर है उम्र में। तो तब उनकी शादी हुई और सबसे बड़ी मम्मी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है वहाँ पर जॉब करती थी। तो मम्मी ने पापा को ये सहूलियत दे रखी थी कि हाँ तो मैं कमा लूंगी, मैं कमा रही हूँ अपने बच्चों को, हमें कुछ कम नहीं पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा, दादाजी और दादी और चाचा जी सब लोग थे तो फैमिली में वैसे पैसे की उनका ये कहना नहीं था कि तुम घर में पैसे दो, पर उनका ये कहना था कि तुम खुद के लिए कुछ कमाओ। तुम्हारी बीवी कमा रही है तो तुम्हें जो करना है वो तुम कर। तो पहली बेटी हुई 74 में, 76 फरवरी में दूसरी बेटी हुई। तब फिर मम्मी को ऐसे लगने लगा, अरे अभी अपनी 2 बच्चियां हो गई, अभी भी ये चीज कैसे कमा रहे हैं। तो रीजनल न्यूज़पेपर्स में उस समय एड आती थी। हाँ, तो फिर वो मम्मी ने वो एड देखी और पापा का ऐसा था, वो पूना मुंबई थिएटर के चक्कर में चक्कर काट रहे थे, अहमदनगर पूना मुंबई, इस तरह से उनका चल रहा था। और फिर जब ऑडिशन थी तब मम्मी ने उन्हें बताया ऐसे ऐसे ऑडिशन है, आपको जाना है और करके आना है। वो समय ऐसा था कि कमाने वाली माँ थी और घर पे दिखाना बहुत जरूरी था कि भाई मेरी फैमिली बढ़ रही है, मैं भी कमा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, चलो अब तुम कह रही हो तो मैं जाता हूँ और ऑडिशन देता हूँ। और ऑफकोर्स उनकी आवाज ऐसी थी कि सिलेक्ट होना ही होना था। तो वो सिलेक्ट हो गए और उन्होंने जॉब करी, 2 महीना उन्होंने जॉब करी वहाँ पर। और 1.5 महीने बाद उन्होंने मम्मी को खत लिखा कि मैं अगर ये करता रहा तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। तो फिर मम्मी ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, तो तुम छोड़ दो। तो उन्होंने छोड़ दिया, पर उन्होंने वो जॉब इस तरह से करी थी तो आकाशवाणी ने उन्हें काफी हाथ दिया था उस वक्त, जब उन्हें वो जरूरत थी पुश की, एक जो साइकोलॉजिकल पुश हमें लगता है मानसिक रूप से कि हमें अभी मुझे कुछ अचीव नहीं कर पा रहा हूँ मैं, उस वक्त जो एक अचीवमेंट की फीलिंग है वो आकाशवाणी ने दी हुई है। और मेरे ख्याल से हमें भी, मतलब ऐसा मेरे बारे में मैं कहूँगी कि जब आप ऐसे घर में पैदा होते हो और बड़े होते हो कि जहाँ पर सुपर अचीवर है आपके आजू बाजू सारे, तब एक होता है कि मुझ में क्या है, शायद मुझ में कुछ नहीं है, ऐसी एक फीलिंग जो घर का सबसे छोटा सदस्य होता है उसमें आ सकती है, आने की आशंका होती है। तब मुझे आकाशवाणी ने हाथ दिया और मुझे ये समझ में आया उस वक्त कि नहीं, मेरे पास मेरी आवाज़ है और मैं बहुत

0: को एक्सप्रेस कर सकती हूँ, कंडक्ट कर सकती हूँ। आई थिंक आकाशवाणी हमारे परिवार के लिए वैसा एक जरिया रहा है कि जिन्होंने हमें, जब हमें कॉन्फिडेंस नहीं था या जब हम एकदम दी है हाँ, तो आकाशवाणी से हमारा रिलेशनशिप हमारी फैमिली का इस तरह से
1: आकाशवाणी से जुड़ गई थी। यहाँ सुनंदा जी का जिक्र आता है और नाटकों का भी जिक्र आता है कि जहाँ वो उनके रास्ते एक साथ हुए, कोई पॉइंट ऑफ टाइम था जहाँ ये साथ जीवन बिताना है, वो कोई एक मोमेंट था जहाँ ये हुआ?
0: पापा उनसे हम इसी तरह सदाशिव घोड़ा काम जैसे कहते हैं, वैसी पर्सनालिटी के थे, स्पेशली जब वो कॉलेज में थे तब, तो उनके दिमाग में एक ही पागलपन चढ़ा हुआ था, एक ही भूत सवार था, वो था नाटक। और उन्हें वही करना था। नाटक करते वक्त घंटों तक आप साथ में रिहर्सल्स करते हैं, सब करते हैं, साथ में वक्त बिताते हैं, तो जो दोस्ती है वो दोस्ती तो थोड़ी ज्यादा है, इतना उन्हें शायद समझ में आया होगा, पर उसके ऊपर कुछ करे, उसके ऊपर कुछ एक्ट करे, ये उनकी पर्सनालिटी नहीं थी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मुझे याद है आज भी, मतलब ये हमारे घर में हमारे बहुत ही आर्ग्यूमेंट का विषय हुआ करता था जब पापा थे तब, कि पहले प्रपोज किसने किया। क्योंकि जब अभी मम्मी ने किताब लिखी है उसमें उसने क्लियरली लिखा हुआ है कि मम्मी ने ही उन्हें एक चिट्ठी लिख के कहा था कि ऐसा ऐसा मेरी फीलिंग है और क्या आपको भी यही लगता है, और उन्हें वो चिट्ठी दी थी उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा था कि देखो अपने दोस्तों के सामने मत खोलना, घर जाके अकेले भी खोलना, बिकॉज पापा ऐसे थे वो हमेशा दोस्तों से घिरे रहते थे, तो दोस्तों के सामने खोलेंगे जोर से पढ़ेंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा, मम्मी को बहुत लग रहा था। तो इस तरह से तो वो पॉइंट था जब मम्मी, क्योंकि मम्मी के घर पे उनके पिताजी की मौत बहुत जल्दी हो चुकी थी जब वो 10-11 साल की थी, तो उस वजह से उनके घर पे वो और उनकी माँ इतने ही थे, उनकी बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी, तो अभी इसके लिए भी लड़का देखो ये करो, जब वो शुरू हुआ उनके घर पे जब वो ग्रेजुएशन के आसपास की, तब उन्होंने कहा अभी ये मेरा ये जो पगड़ा आदमी है उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम ये जो है वो प्यार है, उसे ये समझाना अभी जरूरी हो गया है, और फिर उन्होंने वो चिट्ठी लिखी थी। तब फिर उनका आगे जाके इस तरह से हुआ कि फिर मम्मी ने ही थोड़ा थोड़ा, बिकॉज उस वक्त मेरे दादाजी जो थे वो बहुत कर्मठ स्वभाव के थे, तो किसी लड़की का घर पे आना, लड़कियों से दोस्ती, ये सब इम्पॉसिबल था उस समय और अहमदनगर जैसे छोटे से शहर में। पर लकीली मम्मी के पिताजी और वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, तो जब मम्मी घर जाने लगी दादी से, फिर पापा की बुआ भी उन्हीं के साथ रहती थी, उनसे इस तरह से जब बातें होना शुरू हुई, तब उन्हें समझ में आया कि कुछ तो मामला है। और फिर उन्होंने वन फाइन डे मम्मी को बुलाया वैसे और कहा कि देखो तुम्हें ये सब बिखरा होगा कि इतना बड़ा घर है, ये है वो है, पर ये सब मैं धर्मादाय कर दूंगा, बेटों को कुछ नहीं दूंगा मैं। हाँ, तो अगर तुम ये सोचती हो कि इस वजह से है तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तब मम्मी का इतना फियर था कि उसने कहा ठीक है मैं जॉब कर रही हूँ, मैं चला लूंगी घर, नो प्रॉब्लम। तो बहुत ही ज्यादा क्लियर इन दोनों के थॉट थे। और जैसा मैंने कहा कि पापा को ये शब्दों में पेश करना कि जो हमें हुआ है वो प्यार है, ये पॉसिबल नहीं था जो मम्मी कर पाई, लेकिन जिस वक्त वो कमिटमेंट हो गई उस वक्त वो कंप्लीट कमिटमेंट थी। तो वो हालांकि वो उन्होंने शब्दों में नहीं कहा होगा, पर वो उनके एंड तक, मतलब ये उन्हें प्यार हुआ जब वो 21 साल के थे, 64 के होने तक वो प्यार बिल्कुल वैसा ही रहा, और ये हम सब लोगों ने देखा हुआ है। और उन दोनों ने वही सीख हमें भी दी है कि अगर कमिटमेंट करना हो
1: तो और वो है एक प्रेम कहानी जो चिट्ठी के जरिए आगे बढ़ती है। हम जिस समय और

0: बाद जो पीछे छूट गई है उसको फिर आप पकड़ के आगे बढ़ते हैं। मम्मी की एक किताब है पिताजी के नाम पर, और आपने कहा कि उसमें ये जिक्र आता है कि उन्होंने सबसे पहले इंतजार किया, उस किताब का नाम बताइए और वो नाम क्यों रखा गया इसकी कहानी बताइए।
1: तो वो किताब अगर आप देखेंगे तो उसका नाम है खुलभर दुधाची कहानी। खुलभर माने छोटी सी कटोरी में जितना दूध बहता है वो खुलभर कहते हैं। तो उसका नाम था खुलभर दुधाची कहानी। तो उतने से दूध की ये कहानी।
0: सवाल आता है कि ये क्या
1: है, राइट? तो श्रावण महीना जब होता था तो हिम्मतनगर में या आज भी छोटे गाँव में होता होगा, हर मंगलवार को और शुक्रवार को उपवास होता है, पूजा होती है, कथा कथन होता है। तो उस वक्त जो फोक टेल जिसे हम कहते हैं वैसी कथा कही जाती थी, तो उस समय सुनी हुई ये कहानी है। ये कहानी है कि एक छोटा सा गांव है, एक राज्य है, और वहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है, बारिश हुई ही नहीं है, ठीक है, सूखा पड़ा हुआ है। और वहाँ पर वो राजा हैरान हो जाता है कि अब मैं क्या करूँ।

पंडितों को बुलाता है और कहता है मैं क्या करूं। वो पंडित उसे कहते हैं कि जो ये महादेव का मंदिर है आपके गांव में, तो इसका जो गर्भगृह है उसे पूरी तरह से दूध से आप भर दो। तो शंकर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और फिर आपको बारिश हो जाएगी। तो राजा फरमान निकालते हैं कि हर एक के घर में कल जितना भी दूध होगा, जितना भी जिसके पास होगा, वो सब लाके गर्भगृह में अर्पण कर दे। तो ये सब होता है, फिर भी वो गर्भगृह भरता ही नहीं है। इतना दूध आता है, लंबी लंबी लाइनों में लोग आके दूध डालते हैं वहाँ, फिर भी नहीं होता है। और जो सिपाही होते हैं वो घर घर जाकर आपके पास और दूध है, और दूध है, और दूध है, ऐसा करते हैं। तब वो एक घर में जाते हैं, वहाँ पे एक बुढ़िया होती है। तो वो कहते हैं आप गए थे दूध डालने? उन्होंने नहीं नहीं मैं अभी जा ही रही हूँ। तो उसने एक कटोरी में, छोटी सी कटोरी में दूध लिया हुआ है और उसने क्या किया है कि उसके घर पे जो उसके बच्चे, बच्चियां, पोते सब लोग हैं, उनका खाना पीना सब कुछ होने के बाद जितना दूध बचा वो लिया और वो गई और महादेव जी के ऊपर उसने चढ़ा दिया। और जिस क्षण उसने वो चढ़ाया, वो गर्भगृह पूरा दूध से भर गया। तो कहानी का मतलब ये है कि आपके जो कर्तव्य है वो आप पूरा कीजिए और फिर जो बचा कुचा है वो आप भगवान को दीजिए, भगवान को चलता है। तो बेसिकली आप अपनी जो पूरी जिंदगी है वो अपने कर्तव्यों के प्रति और अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनके प्रति आप अर्पण कीजिए। इस तरह की वो कहानी है। और थोड़ी बहुत मम्मी की जो कहानी है, जीवन की कथा अगर हम सोचे तो वो उसी तरह से गई है। वो भी एक गजब की अदाकारा है, बहुत अच्छा गाती है, लिखती है। बट जब उनकी शादी हुई और उन्हें ये समझ में आया कि नहीं, ये जो मेरा सदाचर है, ये जो मेरा महादेव है, इसे तो करना है, इसमें ज्यादा पोटेंशियल है, इसमें ये करना चाहिए, तब उन्होंने अपना खुद का सब पीछे छोड़कर एक बहुत ही कर्मठ घर में जाकर बच्चियों को पाला और उनकी बेटी की शादी हुई ऐसे 53, फिर उन्होंने अपना लिखाई का काम और ये सब शुरू किया। और अभी ये

0: प्यार दिया जिस तरह से विश्वास किया वैसे ही पापा ने उन्हें रेसिप्रोकेट किया। पापा ने भी पापा का भी उन पर ऐसा ही विश्वास था जो अंधविश्वास हम कह सकते हैं थोड़ा सा था पर वो था। और उस वजह से आई थिंक जो आज भी हमारा घर फूला फला है और इतना अच्छा है वो उस विश्वास की वजह से है।
1: बहुत ही सुंदर रचना है ये जो किताब के नाम की रचना और जिस तरह से आपने उसको विस्तार दिया है ये बहुत ही मार्मिक है। अब चूंकि अमूमन जो रवायती इंटरव्यूज होते हैं वो ये कि बचपन से शुरू करेंगे लेकिन हम कहीं से शुरू हुए तो वो बचपन की बातें हम आगे कहीं जाके करेंगे क्योंकि बातचीत के अंदर रचनाएं तो आगे निकल कर आएंगे। उनकी बातें गंगा जी और सदाशिव जी के रिश्ते की चल रही है और जैसे उनकी दो आपस में टूटती है चली पहले उन नाटकों का जिक्र करते हैं जो उन्होंने उस दौरान पास में किए थे उनसे जुड़ी कुछ कहानियां उनको तो बताएं।
0: राइट तो उनसे जुड़ी तो काफी कहानियां हैं जो सुनते सुनते बचपन से आ रहे हैं पर उन्होंने एक जो प्ले उन्होंने किया था वो था बंडू बेदी यानी बुरखा। तो उस वक्त इंटर कॉलेजेस कॉम्पिटिशन होती थी ये जो प्ले था इसमें बंडू और बेदी तो पति पत्नी का एक्टर था ये इन दोनों ने किया था और उसी नाटक के दौरान आई थिंक दे रियलाइज की दे आर इन लव विद ईच अदर। ये एक नाटक के बहुत सारे किस्से हैं मतलब मम्मी क्योंकि जैसे मैंने कहा कि स्कॉलर इसकी थी तो जब भी उनके एग्जाम आती थी तो वो अवेलेबल नहीं होती थी प्ले के लिए। प्ले तो करना था अभी कॉम्पिटिशन है तो जाना तो पड़ेगा तो उस वक्त मम्मी तो नहीं मम्मी ने कहा मैं तो नहीं मेरी एग्जाम है अभी मैं पढ़ाई करने वाली हूँ आपको जो करना है करो। तो उन्होंने किसी और को वहाँ पर कास्ट किया और फिर मम्मी ने कहा अगर ये लड़की कास्टिंग है तो आप नहीं करोगे ये रोल तो इसलिए फिर पापा का रोल भी किसी और ने वहाँ पर किया।
1: ठीक है बहुत ही सही।
0: तो और वो जो था वो उसका शो था संगमनेर नाम के छोटे से गांव में नगर के पास ही है वहाँ पर उसका शो था और उस समय लाइट चली गई माइक नहीं थे

0: मम्मी हालांकि नाटक में नहीं थी पर क्योंकि वो यूथ फेस्टिवल जैसा माहौल था तो और किसी कंपटीशन में वो थी तो इसलिए वो वहाँ गई हुई थी। तो फिर वहाँ पर और वो जो नई लड़की और लड़का था उनकी आवाज पहुंच ही नहीं रहे थे ऑडियंस तक। तो फिर इन दोनों ने वो डायलॉग पीछे से जोर से वो बोले और उन लोगों ने लिपसिंग किए स्टेज के
1: ऊपर।
0: इस तरह से वो हुआ कि ये जो एक किस्सा है ये बहुत ही अच्छा है। उसके बाद कभी भी मम्मी ने पापा से ये नहीं कहा कि मैं नहीं हूँ प्ले के जो भी डेट चाहिए जब भी चाहिए वो अवेलेबल होती थी।
1: बहुत ही सुंदर एक पूरा दौर था जब प्रदर्शित

0: थे पर वो निर्देशन में भी बहुत रख सकते थे, तो निर्देशक भी थे। तो अगर उनके नाटकों की बात कही जाए तो उन्होंने कुछ नाटक ऐसे किए थे जैसे छूमंतर करके एक नाटक था, फिर बखर एक राज्य था, एक नाटक था, फिर हैंड्स अप, ये जो पांच छह नाटक है, काहिक को अपने विकाय थी ये भी एक था, पर काहिक को अपने विकाय थी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल था और कंपटीशन वाला प्ले था, बाकी के ये जो सारे जो मैंने नाम लिए ये कमर्शियल नाटक थे। काम किया हुआ है नाटक में दिया हुआ है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो उनका अलग अलग जिक्र मिलता है, जैसे फिल्म का बहुत जिक्र मिलता है, इन सब का जिक्र मिलता है, काई चौक ने भी चाय की अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, उसका भी खूब जिक्र मिलता है। अलग अलग मानदंडों पर इन्होंने कुछ
0: किया है। तो काई चौक ने भी चाय की ये जो प्ले था ये बहुत पहले कुछ जो प्ले पापा ने किए थे उसमें से था। तो उसमें वो एक रिटायर्ड टीचर का रोल करते थे जो 83 ईयर रोल करते हैं और उस वक्त पापा की उम्र थी 23-24 मतलब ज्यादा। उस समय उन्होंने काफी सारे उस पे आईएनटी और ये जो सारी कॉम्पिटिशन होती थी उसमें काफी सारे अवार्ड जीते थे उसके एक रोल के लिए। उन्हें लोग कास्टिंग के लिए बुलाते थे कि आप आओ हमारे यहाँ पे प्ले में, और वो हर बार जाते थे तो लोगों को लगता था ये कौन आ गया, वो तो एक बुढ़ा आदमी है जो वो रोल कर रहा है, उम्र भी ज्यादा है, आपने कैसे किया, आप तो नहीं हो सकते। ऐसे काफी सारी अपॉर्चुनिटी उस समय पापा की आंखें चली गई, बिकॉज लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये वही इंसान है जिसने 83 साल के एक वृद्ध इंसान का रोल किया हुआ है, और वो इतना बखूबी निभाया उन्होंने कि लोग ये सोच ही नहीं सकते थे कि ये 24-25 साल का युवक है। तो वो एक प्ले इसलिए बहुत ज्यादा फेमस था क्योंकि पापा की जो एक्टिंग की रेंज थी वो एक फिल्म में काफी सारी हुई थी। इसके अलावा थिनर जो प्ले है वो विजय तेंदुलकर साहब ने लिखा हुआ था, और उसकी खासियत ये है कि वो एक प्ले है जिसमें सबसे पहले और मेरे ख्याल से आखिरी बार वही एक प्ले है जिसमें स्मिता पाटिल जी ने कमर्शियल थिएटर किया था
1: और पापा जी ने
0: एग्जैक्टली, तो इसलिए वो एक बहुत ही खास प्ले रहा है और लोगों ने जो सराहा है उस प्ले को क्योंकि उसका विषय है और जो सब था, एक तो तेंदुलकर साहब की जो लिखाई है वो एक तो पार्ट ब्रेकिंग ग्राउंड ब्रेकिंग होती है और उसके ऊपर पापा का डायरेक्शन, ये बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट दोनों चीजें हुई थी। उसी की स्टाइल में दूसरा एक नाटक कहा जाए तो वो है कन्यादान। कन्यादान में डॉक्टर श्रीराम लागू, मीरा कुलकर्णी, आशालता वाबगांवकर के बहुत बड़े बड़े नाम थे उस समय, और उनके साथ अगेन पापा ने निर्देशित भी किया था, उन्होंने एक्टिंग भी की थी उसमें। छिन्न और कन्यादान, इन्होंने पापा को एक एक्सपेरिमेंटल थिएटर डायरेक्टर के तौर पर एस्टेब्लिश किया, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और उस समय थिएटर जिस तरह से देखा जाता था, लोग जिस तरह से देखते थे, वैसा मुझे नहीं लगता आज तक वो सुवर्ण काल फिर से आया है।
1: उस दौर की बात करें जब टेलीविजन उस तरह से
0: नहीं आया था
1: और महाराष्ट्र में खासतौर पर थिएटर की सशक्त परंपरा थी और कामयाबी के झंडे गाड़ते थे प्लेज और उनकी दास्तानें आज तक कही जाती
0: है। तो ये प्ले था, उसके बाद पापा ने आईएनटी के लिए ही एक प्ले किया था बखर का राजा। तो बखर का राजा के लिए जो प्ले था उसमें मीना कुलकर्णी और दिलीप कुलकर्णी जो उनके हस्बैंड थे वो भी बहुत उम्दा कलाकार थे, उन दोनों को लेकर ये प्ले बनाया गया था। पर उस समय वो प्ले चला नहीं, कमर्शियली इट वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल और आईएनटी को काफी लॉसेस पड़े थे क्योंकि बहुत हिस्टोरिकल सेट सब वैसे लगा था और ये सब हुआ। तो उसके बाद पापा ने डिसाइड किया अब मैं जो करूंगा वो मैं कमर्शियली वायरल करूंगा, पैसे कमाने के लिए लोगों मतलब प्रोड्यूसर भी राइट। तो इसलिए उन्होंने दो प्लेयर्स किए उसके बाद डेफिनेटली जिनके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। एक प्ले तो था छूमंतर, उन्होंने डायरेक्ट किया था, और इस प्ले की मजे वाली बात यह है कि उस वक्त लक्ष्मीकांत बेरड़े को फर्स्ट टाइम कमर्शियल प्ले में पापा कास्ट किया था। तो और वो प्ले बहुत चला, बिकॉज इट वॉज आउट एंड आउट कॉमेडी और बहुत मजा आया लोगों को, और एक लक्ष्मीकांत बेरड़े जैसा कलाकार आया, पापा थे लक्ष्मीकांत बेर्डे थे तो इट वॉज पिक्ड अप लाइक हाउ. उसके बाद हैंड्स अप किया था पापा ने, जिसमें वो थे भक्ति बर्वे थे, ऐसे पांच छह बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्टिस्ट उसमें थे और पापा ने निर्देशित भी किया था वो प्ले. और दैट वॉज अ हिस्टोरिकल प्ले. मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि बहुत बारी ये बात आई भी है कि जब गोविंद निजामी जी ने वो प्ले देखा, अगेन विजय तेंदुलकर जी ने उनसे कहा था कि तुम हैंड्स अप का प्ले देखो, बिकॉज उस समय निजामी जी अरविंद सत्य का कास्टिंग कर रहे थे और पुलिस इंस्पेक्टर का हीरो है ये तो पता था, बिकॉज तेंदुलकर साहब ने वो स्क्रिप्ट लिखी हुई थी. तो उन्होंने कहा था कि तुम ये प्ले देखो, इसमें ये लड़का है ये बहुत अच्छा इंस्पेक्टर निभाता है तो तुम देखो. तो इसलिए गोविंद जी गए, उन्होंने वो देखा प्ले और उन्होंने पापा को इंस्पेक्टर के रोल में ही थे वो देखा, लेकिन उन्होंने उनकी कास्टिंग रावण शक्ति के लिए. ओके. और फिर उसके बाद तो इट इज जैसे हम कहते हैं कि हिस्ट्री है. उसके बाद फिर पापा एक राष्ट्रीय स्तर पर एक कलाकार का नाम उन्हें मिल गया और वो काफी सारी

मजेदार किस्सा है। उस वक्त क्या होता था, जैसे आपने कहा कि वो समय ऐसा था जब मराठी में नाटक की परंपरा बहुत बहुत स्ट्रांग थी, तो दिन में दो दो तीन तीन शो लगते थे एक प्ले के। तो और उस वक्त जैसे अब है, मेट्रो पकड़ लिया चले गए, उबर पकड़ ली चले गए, वैसा नहीं था। आर्टिस्ट को खुद ही जुगाड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। पापा के पास उस वक्त टू व्हीलर थी, तो शिवाजी मंदिर में प्ले खत्म हुआ वहां से उन्हें खाना पहुंच गया था। और ये मैं उस समय की बात कर रही हूँ जब वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे ये सब इतना अच्छा नहीं था बम्बई में। तो पापा स्कूटर पे जाते थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कपड़े नहीं बदले और वो वैसे ही निकल गए। और एक भी सिग्नल पर वो नहीं रुके, और हर बार

0: और आधे घंटे में खुलने वाला है, मुझे वहाँ पहुँचना है बस। और
1: यहाँ भी गाने की जगह बन गई है और मुझे लगता है कि ये करते हैं कि मम्मी की पसंद का कोई गाना लगाते हैं यहाँ पर।
0: मम्मी की पसंद का ये जो गाना है, मेरे महबूब में क्या नहीं।
1: वाह वाह वाह, क्या बात क्या बात क्या बात, सुनते ही गाना।

0: मतलब भी एक दिलचस्प बात हुई लड़कों को लेकर और तेंदुलकर साहब का नाम वहाँ बार बार आता है। बहुत करीबी रिश्ता राशि जी का तेंदुलकर जी से रहा है, उससे जुड़ी कुछ घटनाएं जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ आपको सुनना चाहता हूँ।
1: तेंदुलकर जी एक हम कह सकते हैं विद्यापीठ से
0: बिल्कुल
1: किसी भी घटना की तरफ देखने का उनका जो दृष्टिकोण होता था वो बहुत अलग होता था। रोज की घटनाओं की तरफ भी वो जिस तरह से देखते थे और बात करते थे वो बहुत अलग था। वो प्लेग की वजह से हुई थी पर सुहास औचक करके बहुत बड़े आर्टिस्ट है, पेंटर है, उन्होंने उनको मिलाया था। एक ये अहमदनगर से आया हुआ लड़का है जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, ये जब तेंदुलकर साहब को समझ में आया तो उन्होंने उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट किया। और सपोर्ट किया मतलब मैं इस तरह से कहती हूँ कि देयर वर डेज, ऐसे दिन थे जब दो दो तीन तीन दिन तक पापा उनके घर पर ही रहते थे। हाँ, और उस वक्त तेंदुलकर साहब जो काम कर रहे थे, इतना बड़ा काम कर रहे थे, तो वो प्रोसेस का एक भाग होना एक युवा के लिए जो अहमदनगर जैसे छोटे से गांव से आया है ये बहुत बड़ी बात है। तो पापा हमेशा कहते हैं कि मैं तो उनके सामने जाता था तो जैसे ब्लॉटिंग पेपर होता है जो इंक ब्लॉट करता है, वैसे मैं मराठी में हम उसे टिप कागज कहते हैं, तो वैसे मैं टिप कागज हो जाता था, जो भी मिले वो एब्जॉर्ब कर। बस उतना ही। तो ये स्थान तेंदुलकर साहब का पापा की जिंदगी में था। दूसरा, जब 82 में मम्मी को बॉम्बे में ट्रांसफर मिले तब कैसे तैसे करके पापा ने एक किराए का घर लिया था, क्योंकि हम तीनों बच्चियां, मेरी दादी और मम्मी और वो, ऐसे हम सब लोग रहने वाले थे, अंधेरी में ही लिया था उन्होंने। लेकिन उस वक्त बैंड्रा बहुत महंगा था और उन्होंने अंधेरी में लिया था, तो एक किराए पे छोटा सा घर लिया था। और दो साल बाद वो घर मालिक ने कहा कि भाई अभी नहीं, अभी आप छोड़ दो, मुझे ये घर देखना है। तो रातों रात एक हफ्ते के अंदर बंबई जैसे शहर में एक घर ढूंढ पाना ये बहुत ही डिफिकल्ट है। तो पापा गए तेंदुलकर साहब के पास, क्योंकि जैसे मैंने कहा ही वॉज अ गाइड, ही वॉज अ फ्रेंड, ही वॉज अ फिलोसोफर। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा हुआ है, नो प्रॉब्लम। उन्होंने सीएम साहब के लिए एक लेटर लिखा कि ये ऐसा ऐसा कलाकार है, बहुत अच्छा कलाकार है और इसे बंबई में रहने के लिए घर नहीं है, तो आप इसकी कुछ

के अंदर तुम्हें लिख दिया। उस समय ऐसा था कि 2% कोटा हुआ करता था कलाकारों के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए। तो उसमें से जोगेश्वरी में जो नई एक कॉलोनी बन रही थी वैशाली,

0: यूएसए का फ्लैट भाड़ा का मिला, तो वो लेटर तेंदुलकर साहब ने दिया और इट वॉज अमेजिंग। जैसा पापा हमेशा कहते थे कि आपकी जिंदगी हर मुकाम पर है, आपको अच्छे इंसान मिलते हैं जो या तो आपको कुछ नया दिखाते हैं या आपको आगे पुश करते हैं। तो मेरे ख्याल से और पापा से जो बातें होती थी उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि तेंदुलकर साहब ऐसे थे जो पापा के लिए ना ही मतलब एक नया तरीका दुनिया को देखने का तो जो उन्हें सिखाया उन्हें, पर उन्होंने उन्हें बहुत बड़ा पुश भी दिया। तो बंबई में घर अपना खुद का लेना हो तो उन्हें पहली फिल्म मिलनी हो, पहली फिल्म हालांकि पापा की 22 जून 1897 आगे करेंगे, पर बड़ी फिल्म जिसमें हालांकि 3.5 थे पर वो पूरी फिल्म पे छा गए थे, रामा शेट्टी छा गया था कैरेक्टर, तो वो फिल्म हो तो आई थिंक तेंदुलकर साहब का अनन्य पर्यावरण महत्व हमारी पूरी फैमिली की लाइफ में है।
1: बिल्कुल, एक घटना है जिसमें उन्होंने पूछा था तेंदुलकर से कि आपने अरविंद सत्ती में मुझे रोल क्यों दिलवाया,
0: पर उन्होंने जब पूछा तब मेरे ख्याल से जो मुझे याद है

कैंप है, बॉम्बे से लोगों का एक कैंप है, अभी तो बॉलीवुड में भी यूपी से आने वाले लोगों का एक कैंप है इस तरह से, और वो कलातीत है, वो चलता ही रहता है, हर जगह वो होता है। तो उन्होंने कहा था कि कलाकार जो होता है ना, उसकी जात और उसका ये सिर्फ एक होता है धर्म, वो है कला। और तुम जिस तरह से खुद को सैक्रिफाइस कर रहे हो, वैसे मुझे लगता है तुम ये रोल विकसित कर पाओगे। हालांकि उस वक्त बात ये हुई थी, पापा को लग रहा था कि हीरो का रोल उन्हें मिलेगा, जो कि ओम पुरी जी को मिला था, क्योंकि इंस्पेक्टर हैंडर में उन्होंने इंस्पेक्टर किया था, और ये रामा शेट्टी का रोल उन्हें ऑफर किया गया था। तो उन्होंने टेबल के साथ से पूछा था, तो मुझे तो लगा था मैं इंस्पेक्टर का रोल करूंगा। तो उन्होंने कहा था, तुम बस जो तुम्हें काम दिया है वो ठीक से करो, तुम विलन हो या हीरो हो, दैट डज नॉट मैटर, ये फिल्म के एक्शन में तुम याद रखने वाले लोगों को ये भूलना मत।

0: सकते हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसे बहुत कम मिसाले मिलती है जहाँ कुछ दृष्टियों में अभिनेता ने अपनी वो छाप छोड़ी के इतिहास दर्ज किया। लेकिन ये उनकी पहली फिल्म नहीं थी। तो पहली फिल्म जो नचिकेत और जयू वाली थी वो कैसे मिली उसको
1: वो कैसे मिली इसके बारे में मैं ज्यादा बता नहीं पाऊंगी, लेकिन ज्यादा करके और वहाँ पर वो प्ले वगैरह कर रहे थे तो उन्होंने कास्टिंग में उन्हें तिलक का रोल दिया गया था और पापा उसको एकदम पतले दुबले पतले से ऐसे थे तो जयू और नचिकेत पटवर्धन उनसे बहुत अच्छे दोस्त थे उस वक्त। तो आप करोगे? उन्होंने कहा हाँ मैं करूँगा, नो प्रॉब्लम। चलो मतलब पापा कहते थे कि अभी दुकान ही खोल कर बैठे हैं तो जो आएगा वो करना तो पड़ेगा, इस तरह से उन्होंने वो किया था। तो लेकिन उन्होंने तो रोल किया उस वक्त जयू और नचिकेत पटवर्धन, ये अभी तो बहुत ही सीनियर और रिस्पेक्टेड ये है पर वो भी काफी यंग थे। और फिल्म में मुझे याद है पापा ने बाद में जब राज से स्वराज तक में लोकमान्य तिलक का रोल किया तब उन्होंने बहुत ज्यादा उस पर मेहनत की थी क्योंकि उन्हें समझ में आया था कि ये जो फिल्म हमने की है जयू नचिकेत के साथ उसमें हालांकि मैं तिलक लग रहा हूँ टीचर्स के तौर पर लेकिन जो उसका क्रिटिक आया था वो ऐसा आया था कि मैं मराठी में वाक्य कहती हूँ लोकमान्य तिलक और रामोचा सरखा दिखो। रामोची मतलब जो क्लीनर्स होते हैं ना ऑफिस में या घर में ये रामोची कहा जाता था एक जमाने में, अब तो नहीं कहते कोई। तो इस तरह से वो दिखता है तो इसलिए उसके बाद जब पापा ने राजकीय स्वराज तक की जब उन्हें फिर से एक बार तिलक करने का मौका मिला लोकमान्य तिलक का किरदार निभाने का मौका मिला तब पापा ने बाकायदा 6-8 महीने उस समय ये नहीं होता था लेकिन

0: लोकमान्य तिलक की जो बॉडी थी ही वॉज वेरी वेल बिल्ट, तो इस तरह से दिखने के लिए पापा ने वो सारे एफर्ट्स लेकर वो काम किया हुआ था। ये फिल्म के बारे में जब भी पापा से बात होती थी तो कहते थे मैं तो थ्रिल था कि मुझे फिल्म में ले आए, क्योंकि उम्र भी काफी कम थी। और क्या करना चाहिए जब आप कोई इस तरह का किरदार जो इतना बड़ा है, इतनी बड़ी इंसान का किरदार जब आप निभा रहे हो, तब क्या करना चाहिए इसके लिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये दोनों चीजें उन्हें उस फिल्म से समझ में आई। आज भी जब वो दूरदर्शन पे वो फिल्म लगती है तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच।
1: बिल्कुल, राष्ट्र स्वराज का जो जिक्र आया है, मैंने उनके जर्नी में देखा और पढ़ा है कि बहुत ही रोल कौन से रहे, तो उन्होंने बड़ी फिल्मों और वो तमाम मशहूर रोल को छोड़ के इसका जिक्र किया। वो क्यों है?
0: जो लोकमान्य तिलक की भूमिका निभाना है उनके लिए एक लर्निंग कर्व रहा है। 28 जून 1897 ये फिल्म में जयमोहन नचिकेत पटवर्धन उन्हें डायरेक्ट किया था लोकमान्य तिलक की भूमिका में, और यहाँ पर अमाल अलाना जी ने उन्हें डायरेक्ट किया था राष्ट्रीय स्वराज तक में। अमाल अलाना जैन एक बहुत बड़ा नाम है अल गांधी सर, जिन्होंने एनएसडी जैसी संस्था को रूप लाया, उनकी बेटी अमाल अलाना उन्होंने ये दिग्दर्शित किया हुआ था। एज एन एक्टर ऑल्सो ही वॉज अ स्टार एट दैट टाइम जब राज्य स्वराज तक हुई थी, तो जब उन्हें फिर से चांस मिला कसर रह गई है वो पूरी करनी है, अभी मैं रामोशी नहीं देखूंगा। मुझे याद है उन्होंने वो वीक गुस्से लेके, बिकॉज उनकी कंटिन्यूटी काफी सारी फिल्म की होती थी। अब जैसे होता है कि कलाकार एक समय पे एक ही फिल्म करते हैं तो इसलिए वो पूरी तरह से वैसे ड्रेसअप होते हैं, वैसे नहीं हुआ करता था उस वक्त। जब भी फिल्म का शूटिंग हुआ तो दो दिन उस फिल्म का हुआ, इस तरह से सोचा बाहर निकालना या ये नहीं पॉसिबल नहीं था। पर मुझे याद है कि जब उन्हें ब्रेक था एक महीने का, तब पापा ने जो कोर्ट सीन्स थे स्पेशली उसके लिए ये निकाले थे, तो अमाल जी ने उन्हें कहा था कि देखो कोर्ट सीन में जब लाइटिंग होती है तो विग बहुत बुरा दिखता है। तो इसलिए उन्होंने उस समय बाल निकाल कर, और बाकी की फिल्मों में अगर आप देखोगे उस समय में जो शूटिंग हुए थे उसमें पापा ने विग्स पहने हुए हैं। एग्जैक्टली, पर उस समय कलाकार ऐसा नहीं करते थे, वो मैं बताना चाहती हूँ। ही वॉज वेरी वेरी इन्वॉल्व इन द स्क्रिप्ट, और उस समय तक पापा का जो रीडिंग था, पापा ही वाज अ वोरेशियस रीडर, मतलब रोज वो जो भी उनसे पढ़ना जो बनता है किताबें पढ़ना उनका एक जरिया था। तो तब तक उन्होंने जो इतिहास में पढ़ा था, आई थिंक उसकी वजह से भी उन्हें वो करते वक्त, वो एक्टिंग करते वक्त बहुत मजा आया था, इसीलिए शायद वो उनका फेवरेट ये है कि मैं अभी प्रूव करूंगा। और वैसा लोकमान्य तिलक बाद में, हालांकि बहुत लोगों ने कोशिश की, पर जैसा राष्ट्रीय स्वराज तक में है वैसा लोकमान्य तिलक आज तक हो नहीं पाया है, वैसा लिखा भी नहीं गया है उस तरह से। तो आई थिंक इसलिए वो उनका बहुत फेवरेट कैरेक्टर रहा है।
1: दिलचस्प बात यह है कि इस सीरीज को आज भी लोग खोज खोज कर देखते हैं और दूरदर्शन के आर्काइव्स पर ये अभी भी देखा जा सकता है। अगर अगर आप देखते हो तो
0: मुझे ऐसा लगता है कि एक गाना है जो बिल्कुल पापा की जो सोच थी उनके समाज के प्रति, उनके देश के प्रति, वो बहुत ही सुंदर तरीके से जिस गाने में आई है वो था राजीव फिल्म का कै वतन वतन मिले आबाद रहे थे।
1: सुनते ही गाना

थे। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर के पुत्र युष्मा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की पहली खेल। बातचीत की श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना होता, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में। मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने वाले पेंटर अखिलेश से एक बात की,
0: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके

हम हर साथ एक मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जयपुर का

के अंदाज में सबसे जुदा। खुद की मूरत है तू, तू ही है मेरा जहां। कभी भी मौसम बरसात की तू मेरे वजूद को भिगो जाती है,

sống vui vẻ, sám hối trong

0: होस्ट आतिश कौशिक को फॉर गीत समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: और सुन रहे हैं देवभारती राष्ट्रीय सेवा।

नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से

0: transformar नई दिल्ली। अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे तो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री तो पता है कि मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 1100।
0: आपको निमंत्रण देता हूँ मेरे मन की बात के लिए, आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
1: जरूरी संदेशों को और अब कार्यक्रम लोकग्रंथ। लोकग्रंथ में आज हम आपको सुनवा रहे हैं भोजपुरी लोकगीत और आपके कलाकार हैं अनिल कुमार सिंह।

समझ के अर्जुन लोक रंग के तहत इसके साथ ही लोक विधि का कार्यक्रम लोक रंग अब यही सम्पन्न होता है। आपको बताएंगे आज लोक रंग कलाकार अनिल कुमार सिंह को

Ya también me estoy todavía, entonces el...

சாட்சி தந்தேன். அவர் தன்னுடைய

100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जोशीपुर का विद्यार्थी केंद्र है। शाम के 7 बजे ठीक से 7 बजे आप सुनेंगे रांची से प्रसारित प्रादेशिक समाचार।

makes so much sense. भारत ही नहीं पूरे दुनिया अंगीकार किया और पूरी दुनिया में आप सार्वजनिक रूप से आप सभी योग करते हुए आपको लोग दिखाई।

लोग सभा के 14 से 15 लाख देने से शुल्क मिलेगा और जो गांव में लगेगा उसमें सबको एटीएम कार्ड देंगे कि 20 मीटर से

से क्या बयान आ रहा है, ये सभी चीजें हम लोगों के कल्याण में, लेकिन इस तरह से गठबंधन में अगर हम लोग सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के आरोप लगाए तो उससे बेहतर होगा कि हम गठबंधन की बैठक करें और उस गठबंधन की बैठक में हम चर्चा कर लें और उसके बाद जो भी निर्णय हो गठबंधन में उस निर्णय को हम

Bir sonraki videoda görüşmek üzere.

युद्ध 3 से 16 दिसंबर तक लड़ा गया था। इस दौरान हमारे तीनों सेना के सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। तकरीबन 4090 भारतीय सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। 600 सैनिकों को विभिन्न सैन्य सम्मानों से नवाजा गया, जिनमें 4 परमवीर चक्र, 76 महावीर चक्र और 513 वीर चक्र शामिल हैं। इन महावीर चक्र विजेताओं में से ही एक है हमारी आज की शौर्य गाथा के नायक सिपाही पांडुरंग सालुंखे, जो शामिल थे उस 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री में, जिसे इस युद्ध में बैटल ऑनर बुट और द थिएटर ऑनर पंजाब का सम्मान भी मिला।

युद्ध का आभास होते ही संभावित हमलों को रोकने के लिए रक्षात्मक कार्यवाही शुरू कर दी गई। इसके तहत 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री को मध्य के पास साकी नाले पर फतेहपुर लोगों का भार सौंपा गया। इस इन्फेंट्री में ही शामिल थे सिपाही पांडुरंग सालुंखे। इस इन्फेंट्री ने छंकना, सुर और भिंडी औलख गांवों में निगरानी रखने के साथ ही वेरा में भी लड़ाकू दस्ता स्थापित कर दिया। मराठा लाइट इन्फेंट्री के इस कदम से फतेहपुर, बुर्ज और घोगा इलाके की सीमा सुरक्षा बल फोर्स को भी मजबूती मिली। यूं ही मराठा लाइट इन्फेंट्री अकेली नहीं थी, उनके साथ एक फील्ड रेजिमेंट और 66वीं आर्मर्ड रेजिमेंट की विजयंत टैंक स्क्वाडन भी थी। वहीं अमृतसर की दिशा में शत्रुओं को रोकने के लिए दूसरी बटालियन तैनात थी और तीसरी बटालियन को गुरदासपुर सेक्टर में मोर्चा दिया गया। इस तरह हम शत्रुओं के लिए

दुश्मनों का कब्जा था। वहाँ की सेना के हाथ में गांव बने रहे, लेकिन एक बड़ा क्षेत्र दुश्मनों के कब्जे में था। युद्ध के मैदान में हार जीत बनी रहती है, लेकिन सबसे जरूरी होता है अपने हौसले और धैर्य को बनाए रखना। यहाँ हम ये नहीं देखते कि दुश्मन के हाथों में क्या है, बल्कि इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि हमारे पास मौजूद संसाधनों का उपयोग किस तरह किया जाए। यही वो गुण है जो हमारी भारतीय सेना के जवानों के अंदर मौजूद है।

चार पाकिस्तानी 3 और 4 दिसंबर की रात अपनी 2 बटालियन के साथ हमला बोला। 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री का मुकाबला 43वीं बलूच के साथ हुआ। देर रात शुरू हुए इस हमले में पाकिस्तान को बढ़त मिली और उसने घोगा, बहलोल, गुलगढ़ के साथ

राष्ट्र युद्ध आरंभ हो चुका था और एक बड़ा क्षेत्र भी उनके कब्जे में था। हमारे आज की चौली गाथा के नायक सिपाही पांडुरंग सालुंखे अपनी रेजिमेंट के साथ युद्ध मैदान में डटे हुए थे। आगे की रणनीति पर विचार हो रहा था तो 5 दिसंबर को 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री ने अपना प्रयास जारी रखा और एक छोटी ही सही लेकिन महत्वपूर्ण घटना हुई। दुख और औलत में ईस्ट बंगाल राइफल्स के करीब 150 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। वो अपने साथ पाकिस्तानी सेना से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी भी ले आए थे। सेना ने यह तय किया कि पाकिस्तान के कब्जे से धुस्ती बंद को वापस लेना है, किसी भी हार से तुरंत बौखला कर वार न करना, बल्कि कुछ कदम पीछे हटकर एक रणनीति के साथ वापस युद्ध मैदान में जाना एक सार्थक

तभी सफल हो पाता है जब उसके पास एक साहसी और निडर सेना मौजूद हो। मेजर रणवीर सिंह 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट और अन्य रेजिमेंट के साथ बुर्ज पर दुश्मनों को दोनों ओर से घेरने की योजना बना चुके थे। ऐसे में उन्हें अपने साथ मौजूद सभी सैनिकों पर पूरा भरोसा था। रेजिमेंट भी अपने साहस, पराक्रम और जज्बे का एक एक कतरा न्यौछावर करने को तैयार थे। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट जिनकी रग रग में दौड़ता है कर्तव्य, सम्मान और साहस, जो हर बार शत्रुओं को ये याद दिलाते हैं कि वो भारत की सबसे पुरानी लाइट इन्फेंट्री है, जिनके युद्ध घोष से ही शत्रु के हृदय में भय की झंकार होती है। उसी 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल थे हमारी आज की सौर्य गाथा के नायक सिपाही।

के बीच शत्रु सेना के साथ मराठा पैदल सेना ने आमने सामने की लड़ाई की। यहाँ तक कि हमारी सेना ने कुछ स्थितियों में शत्रुओं से सीधे हथियार छीन लिए और उन्हें हराया। ये बेहद खूब और मुश्किलों से भरी लड़ाई थी, क्योंकि हमारे सैनिक शत्रुओं के मोर्चे पर जाकर उनसे सीधे लड़ रहे थे। इस बीच पीछे से टैंक और पैदल सैनिक भी उनकी मदद के लिए आ रहे थे। शत्रु बुरी तरह से बौखलाया हुआ था। एक ओर उस पर सीधा हमला जारी था और दूसरी ओर उसे अपनी हार नजर आने लगी थी।

की ऐसी चाल पर पड़ी जिससे हमारी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। शत्रु ने एक रॉकेट लॉन्चर पैदा सेना के साथ आ रहे भारतीय सैनिकों की ओर मोड़ दिया था। अनहोनी किसी भी वक्त हो सकती थी। सिपाही पांडुरंग सालन थे शत्रु सेना के बुर्ज पर अपने साथियों के साथ भिड़ रहे थे। इसी बीच दुश्मनों ने रॉकेट लॉन्चर पीछे से आती पैदल सेना और भारतीय सैनिक की ओर मोड़ दिया। इस पल में ही बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। जैसे ही सिपाही पांडुरंग ने रॉकेट लॉन्चर को देखा, बिना वक्त गवाए वो उस ओर दौड़ पड़े। सिपाही पांडुरंग सालंकी ने शत्रु सैनिक के हाथ से रॉकेट लॉन्चर छीन लिया और उस शत्रु सैनिक को मार गिराया, लेकिन शत्रु उनके इस कारनामे से बौखला गया और सिपाही पांडुरंग सालुंखी पर तीन रन से धुआंधार वार किया। गोलियों के बौछार से सिपाही पांडुरंग सालुंखी वहीं शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने अपने इस बलिदान से अपने कई साथियों की जान बचा ली। यही नहीं, उनके इस बलिदान के कारण ही बुर्ज पर भारतीय सेना का कब्जा हो सका।

गांधी ने जब बलिदान दिया तब वो मात्र 22 वर्ष के थे। इस छोटी सी उम्र में ही उन्होंने वो बड़ा काम किया जिनसे उनका नाम अमर हो गया। सिपाही पांडुरंग सारंगी को उनकी इस असाधारण बहादुरी, अदम्य साहस और कर्तव्य निभाते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए

0: pues internet es un sitio durante
1: la
0: इसलिए जो आप कह रहे हैं आप जीने की तमन्ना है मरने का इरादा है तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाए तो मर जाए गाते गाते आप इस दीवार से जाते हैं जब कर जाते मैंने कहा कोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई मैं भाग रही हूँ और जब भी कर लूँ गा भी रही हूँ मूड भी और एक्सप्रेशन भी चल रही है ये कैसे हो सकता है बड़े टेंशन में वो शॉर्ट किया मैंने

समय है बहुत भारतीय राष्ट्रीय सेवा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम इंद्रधनुष साज और आवाज बांसुरी पर है पारसनाथ। सबसे पहले सुनते हैं इस गीत को।

0: तुम उस दिन समझोगे भाई राम जब इस स्टोर में सारे लग जाएंगे।
1: ऐसा न करिएगा सर, ऐसा न करिएगा।
0: बजाय इसके कि तुम लोग किसी कस्टमर से बात करो, किसी मोटे ग्राहक को फांसो, सारे दिन मक्खियां मारते रहते हो।
1: क्या करें सर, यहाँ पर कोई खास

0: मैथ पाउडर वाला ये समझ भाई बड़ा होता है जिसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं समझी तुम
1: सर। जब से आपने हमें ये सिखाया है कि हर ग्राहक को अपना बाप समझो तब से मैं हर ग्राहक को अपना बाप समझ रहा हूँ।
2: Yes, sir. I also treat my every customer like my daddy.
3: लेकिन जिस डैडी की जेब में

छोटी और बड़ी चीज मिलती है। ऐसा पूछिए, तुम्हें ऐसी ये दुकान थी, ऐसी रोटी खाई

0: आदमी लेकर जुड़ाएंगे क्या दूसरे का उत्तर तीन बच्चे गाड़ी में से आपको कौन सी गाड़ी पसंद है
1: मुझसे पूछा जाए तो ये गाड़ी

एक ऑर्डर कोई ऑर्डरी पाउडर नहीं है, इस पाउडर को लगा कर सारा फिल्म इंडस्ट्री महकता है सर। फिल्म का डायरेक्टर, हीरो, हीरोइन, साइड हीरो, साइड हीरोइन सब लगाता है सर, वन टू ऑल सब लगाता है। पता सर, नॉट ओनली दैट, इधर देखिए सर, एक ऑर्डर जो है ना, फिल्म का डायरेक्टर टू डायरेक्टर,

0: से मिलिए, ये हमारे म्यूजिकल डिपार्टमेंट के इंचार्ज है मिस्टर
1: देखिए सर, हमारे पास तरह तरह के नए से नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी हर साज यहाँ मौजूद है, हर साज यहाँ पर दिखता है। हुजूर आप कौन सा साज बजाने का शौक रखते हैं? मेरा मतलब है

हुजूर को हर सांस बजाने का शौक है और हुजूर को रिकॉर्ड सुनने का भी तो शौक होगा। तो सर आप ताल कहरवा भैरवी पारी ख्याल मैदानी ख्याल तीन ताल चार ताल नैनीताल मंदिर ताल पसंद करेंगे या दादरा दूरी गजल के रिकॉर्ड पसंद करेंगे?

0: हमारे देश की एक मशहूर गायिका है, अफसोस ने सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब नाम कमाया है। उसके गले में क्या दर्द है, मेरा मतलब है गले में क्या आवाज है, आवाज में क्या दर्द है, दर्द में क्या कसक है, कसक में क्या जादू है। सत्तर कली का गाना सुनते ही आंखों में पसीना और माथे पर आंसू, मेरा मतलब है आंखों में आंसू और माथे पर पसीना आ जाता
1: है।
0: शिवाय
1: हमारे शो में पहली बार सजीव लाइए।

Bob, it's going to be right.

करता है गीता कृष्णा फिल्म धुरंधर दर्जन से आवाज है खान साहब और शास्त्र सजदे की थी। गीत केवल नुसरत फतेह अली खान के संगीत शास्त्र सजदे और नुसरत फतेह अली खान का।

0: गोविंदिनाने काज किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों काज किया। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंख से बहुत अपॉर्चुनिटी थी।
1: जब हमारी अभिनेता

0: काम भी दरबारी के दरबार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बना समझी रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के दरबार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पर मेहनत किया।
1: उनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को

用的。身体怎样，内心怎样，相信身体，真正的。

0: वर्ड खरीदते हैं स्वस्थ आयु के लिए योग। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य

0: मंत्री ने कहा कि देश भर में रेल अवसंरचना और सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 70,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
1: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का सफल पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसलिए पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पर लगेगा, क्योंकि DPR बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, उसके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।

मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी,

0: पुस्तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: माननीय प्रधानमंत्री के मन की

सेकंड लाइन सचिन साहब से अच्छी में नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूँ। दिनेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या कि एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन देखेंगे। वो गाना करते करते वो हुक लाइन

किया था। तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं,

0: पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: इसलिए उनकी जागृति इस कार्यक्रम में जादूगरी अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के पूजा में
0: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा तो बड़े की रामा की रामा की और उस तरीके बड़बड़ी और धुंध वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: इतनी धूम से 12

0: कोई मेरे जिस्मेदार पर ऐसा फूल डालना मेरे मजार पर अड़चंग हाथ में था मगर था पलक गया धोखा है आसमान का मेरे गुबार पर।
1: ये थे थॉमस बीच ऑल्टर जिनका जन्म 22 जून 1950 को मसूरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। दरअसल टॉम ऑल्टर एक अमेरिकन क्रिश्चियन मिशनरी के बेटे थे। बचपन का उनका समय हिमालयन हिल स्टेशन लंगौर में बीता था। वैसे आपको बता दें टॉम ऑल्टर ने हाल ही में एक लेख में बताया था कि उनके जो परदादा थे तो वो ओहायो यूनाइटेड स्टेट थे। 1916 के जमाने में भारत में आए थे और उसके बाद भारत में उनका परिवार अलग अलग जगहों पर रहा। टॉम ऑल्टर के पिता इलाहाबाद के एडिंग क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाया करते थे। इसके बाद वो सहारनपुर की एक सेमिनरी में पढ़ाने लगे थे। बाद में उनके माता पिता ने राजपुर में एक आश्रम शुरू किया था जिसका नाम था मसीही चरण केंद्र। फिर जबलपुर सहारनपुर उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर राजपुर में रहने के बाद देहरादून और फिर वो मसूरी में जाकर बस गए।
2: मैं जल्दी से एक बात बताता हूँ, अमर प्रेम दिल्ली में लगी थी, हम मसूरी में थे उस टाइम तो मसूरी में फिल्में बहुत बाद में लगती हैं, पहले देहरादून आती है फिर दिल्ली की मसूरी आ जाती है। तो हम लोग रात की बस पकड़ के मसूरी से रात का सफर करके दिल्ली गए थे ये फिल्म देखने के लिए अमर प्रेम, मुझको याद है। 3 बजे का शो देखकर फिर थोड़ा सा खाना वाना खा के वापस आकर हमने ये 7 बजे का शो देखा, फिर रात वाली बस से हम वापस आए मसूरी। तो ये अमर प्रेम से इतना हमारा अमर प्रेम था उस टाइम। तो इस फिल्म के भी गाने मतलब एक के बाद एक सब सुपरहिट थे और बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन एक जो गाना है जो जिसका इस फिल्मी दुनिया से एक खास ताल्लुक है वो मैं पेश करना चाहूँगा। उस गाने का नाम है कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना।

तो उनकी हिंदी बहुत ही अच्छी थी। मसूरी के वुडस्टॉक स्कूल में अपनी शुरुआती पढ़ाई करने के बाद टॉम अमेरिका चले गए थे। तब उनकी उम्र 18 साल की थी। एक साल तक वो येल यूनिवर्सिटी में रहे। 19 बरस की उम्र में टॉम टीचर बनकर आ गए जगाधरी हरियाणा में। लेकिन क्योंकि स्पोर्ट्स से उनका गहरा लगाव था तो वो वहाँ बच्चों को क्रिकेट भी सिखाया करते थे। 2.5 बरस तक टॉम वॉल्टर जगाधरी में रहे। इसके बाद वो उसी स्कूल में चले गए जहाँ उनकी खुद पढ़ाई लिखाई हुई थी, यानी मसूरी का वुडस्टॉक स्कूल। यहाँ भी उन्होंने थोड़े दिन पढ़ाया। जब वो जगाधरी में रह रहे थे तब हिंदी फिल्मों से उनका ज्यादा लगाव हुआ। इसी दौरान उन्होंने

0: टॉम ऑल्टर की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। उन्होंने सोचा कि वो फिल्मों में काम करेंगे। इसके तकरीबन दो बरस के बाद टॉम ऑल्टर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी पुणे में एक्टिंग का डिप्लोमा लेने के लिए आ गए। सन 1972 से 1974 तक वो पुणे में रहे।
1: मैंने सन 72 में फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था और एक्टिंग जगत का सफर तब शुरू हुआ था। से दो साल वहाँ रहा मैं पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में, बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा दिया, बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर 74 में मैं आया था, मेरे ख्याल से मई का महीना था और मैं अपनी मोटरसाइकिल पर पुणे से बम्बई आया था। मुझको याद है, याद है, जेब में 44 रुपये थे और एक पुरानी मोटरसाइकिल थी मेरे पास। उसके अलावा सपनों के अलावा कुछ नहीं था मेरे पास। ये सपनों का सफर तब शुरू हुआ था। काफ़ी तकलीफें भी झेलनी पड़ी, आज भी झेल रहे हो, बट

0: हर जाना ये बहुत जरूरी है हर आदमी के जीवन में पसंद का साथ भी जारी है और एक मजेदार संघर्ष है।
1: टॉम वॉल्टर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो राजेश खन्ना बनना चाहते थे, वो एक रोमांटिक हीरो बनना चाहते थे। हालांकि फिल्मों में उनका जो करियर रहा वो बतौर हीरो नहीं बल्कि बतौर चरित्र अभिनेता रहा। सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी।
0: राज कपूर की एक बहुत ही मशहूर फिल्म थी रामचरित मानस वाली, मैंने मलाशनी के ब्रदर का रोल किया था, एक पहाड़ी आदमी है, वो भी हिंदुस्तानी रोल है। ये दोनों से बहुत पहले, लेकिन जिस तरह मैंने कहा लोग जल्दी भूल जाते हैं, कम पर वर्ष कोई शिकायत नहीं, वो रोल मुझे बहुत बहुत पसंद था क्योंकि वो अपनी जान की कुर्बानी देता है अपनी बहन के लिए, तो वो एक रोल था। फिर एक फिल्म आई थी शतरंज के खिलाड़ी सत्यजीत रे की, उसमें मैंने अंग्रेज का रोल किया था जरूर, लेकिन उस अंग्रेज को शेर शायरी में दिलचस्पी थी और हिंदुस्तान से बहुत प्यार था और उर्दू में बात करता था वो, तो वो बहुत ही एक दिलचस्प किरदार था शतरंज के खिलाड़ी में।
2: इस मुलाकात के लिए हम सरदारे आलम के बेहद शुक्रगुजार हैं। We also appreciate his gesture in disarming his soldiers. हम फौजियों की उनकी अच्छी कदर करते हैं। We regard it, we hope rightly, as evidence of his concern to negotiate a peaceful conclusion for the treaty. हम समझते हैं अलीजाय अधिनामे के बारे में दोस्ताना बातचीत के लिए तैयार। I would like, if I may, to add a personal request to His Majesty that he please sign this treaty and formalize its ratification.
3: हमारी दरख्वास्त है सुल्तान आलम अहदनामे पर दस्तखत फरमा के अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार हो जाए।
2: His Majesty shall have a maximum of 3 days for deliberation.
3: इस मसले पर फरमाने के लिए सुल्तान आलम को ज्यादा से ज्यादा 3 दिन की मोहलत मिलेगी।
2: After which the company will assume the administration of Aug.
3: बाद इस मुद्दत के कंपनी बहादुर अवध का सारा इंतजाम अपने हाथ में ले लेगी।
2: I hope the king has understood what I've said.
3: हमने जो कुछ कहा है उम्मीद है सुल्तान आलम समझ गए होंगे।
2: Please tell His Majesty that I have no use for that.
3: ये रंजन साहब की किसी काम की नहीं है।
2: आप हमारी दस साल को ले सकते हैं जैसे से कम।
0: और तब जहाँ तक हिंदी या हिंदुस्तानी का सवाल है, मैं तो मेरी पैदाइश तो मसूरी के यूपी के हूँ। जिस जमाने में मेरी पैदाइश हुई यूपी के उस इलाके में लोग या तो हिंदुस्तानी में बात करते थे या तो उर्दू में। हिंदी तो उस इलाके में बाद में आई, मैं वेस्टर्न यूपी की बात कर रहा हूँ, मसूरी देहरादून की बात कर रहा हूँ। बचपन में मेरे वालिद साहब उर्दू में लिखते भी थे, पढ़ते भी थे, बात भी करते थे उर्दू में, तो शुरू से मेरे अंदर एक बहुत ही एक दिलचस्पी रही, एक शौक रहा उर्दू सीखने का। हिंदी तो हमने स्कूल में सीखी थी, तो मैं जब पूना आया था 1972 में फिल्म इंस्टीट्यूट में, मैंने कहा मैं इस शौक को अब मतलब उसको एक अंजाम भी दूँ। मेरे एक दोस्त वहाँ बने मोहम्मद रफीक, तो उन्होंने मुझको उर्दू सिखाना शुरू किया पूना में 2 साल तक। फिर मैं यहाँ आया तो मेरी खुशनसीबी ये रही कि उस्ताद जालिब साहब से मेरी एक मुलाकात हुई, बहुत जाने माने उस्ताद थे उर्दू के, उनके इंतकाल हुआ कुछ 6-7 साल पहले, तो 5 से 6 साल तक मुसलसल मैं जालिब साहब के साथ उर्दू सीखता रहा। और जालिब साहब के बारे में इस वक्त कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत ही जज्बाती मामला है, लेकिन अगर कुछ हद तक मुझको उर्दू आती है वो सिर्फ जालिब साहब की वजह से, लेकिन उर्दू का शौक मेरे अंदर इसलिए आया क्योंकि मेरे फादर भी बोलते थे, लिखते थे, पढ़ते थे। और उस जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि यूपी के उस इलाके में जहाँ मेरी परवरिश हुई उस जमाने में उर्दू या हिंदुस्तानी जबानें चलती थी, हिंदी बाद में शकील बदावनी एक शेर है अगर वो बहुत ही जाने माने शायर थे, उन्होंने लिखा कि शकील दिल हूँ मैं हूँ मोहब्बतों का राजदान, मुझे फख्र है मेरी शायरी मेरी जिंदगी से जुदा नहीं। यानी कि शायरी और जिंदगी अगर जुदा यानी कि अलग अलग रहे तो तब आदमी शायरी नहीं कर पाता, शायद शायरी लिख पाता लेकिन कर नहीं पाता।
1: आज के कार्यक्रम में आप की जो रिकॉर्डिंग सुन रही है वो बहुत बरस पहले दलित भारती की एक इंटरव्यू के दौरान कही गई बातें हैं।
0: उस तरह से एक और फिल्म का नाम लूंगा मैं जरूर, उसके नाम पे चमेली मैन साहब, इसमें मेरा हीरो का रोल था, वो भी बहुत ही सिंपथेटिक रोमांटिक बहादुर इंसान था वो, तो मुझे वो रोल शायद सबसे ज्यादा पसंद है। वो फिल्म भी पसंद है लेकिन वो रोल मुझे बहुत पसंद है, और वो जो हीरो का रोल था वो मुझको उस फिल्म के अलावा बस और एक फिल्म में मिला था हीरो का रोल जो कभी कंप्लीट नहीं हुई थी। तो मेरी जो तमन्ना थी ना, जो एक मसूरी से

0: फिल्म सरदार भी काम किया।
1: आज इस मीटिंग में जो फैसले लिए जाएंगे उनका असर सिर्फ इस मुल्क ही पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर होगा। इसलिए मौजूदा हालात को देखते हुए और आप सब लीडरों के साथ बात करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हुकूमत जल्द से जल्द सौंपी जानी चाहिए। अब यार हमें पूरी उम्मीद है कि आपके इन फैसलों से पैदा होने वाले हालात को संभालने के लिए आप सब तैयार हैं।
0: क्या बोलते न केवल फिल्मों में सक्रिय थे बल्कि बच्चों बरस तक वो टेलीविजन के लिए भी काम करते रहे।
2: प्रोफेशनली मैं सबसे पहले सिनेमा से जुड़ गया था क्योंकि उस टाइम में टेलीविजन था लेकिन उसको ज़्यादा उसकी ज़्यादा अहमियत नहीं थी। तो और हम आए थे बम्बई में फिल्मों में काम करने के लिए, टेलीविजन में काम करने के लिए नहीं, या नाइटो थिएटर में काम करने के लिए। तो सिनेमा से मैं जुड़ गया था और एक सपना था हीरो बनने का फिल्मों में, और कुछ एक छोटी सी हद तक वो सपना साकार भी हुआ। लेकिन आज भी हालांकि टी वी में बहुत काम करता हूँ मैं, अब टी वी से मुझे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन आज भी मैं अपने आप को फिल्म आर्टिस्ट मानता हूँ। रेफरेंस में रखना बहुत मुश्किल है। प्रोफेशनल तौर पे तो टी वी को मैं ज़्यादा पसंद इसलिए करता हूँ कि टी वी में एक मुसलसल आपको काम मिलता रहता है, और अगर आपकी सीरियल हिट हो गई तो जिस तरह जुनून हिट हो गया है, पाँच या साढ़े पाँच साल तक लगातार आप एक ही किरदार को निभा रहे हैं तो बहुत उसमें मज़ा आता है। तो प्रोफेशनली आजकल मैं टीवी को ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन जो एक मज़ा आता है काम करने में, या जब आपकी पिक्चर हिट होकर रिलीज हो जाती है या रिलीज होकर हिट हो जाती है, वो जो मज़ा है जब आपकी पिक्चर हिट हो जाती है और लोग मतलब बेशुमार लोग थिएटर हॉल में जाते हैं आपकी फिल्म देखने के लिए, तो वो जो मज़ा है वो सिर्फ सिनेमा में है, वो टीवी में नहीं है। तो उसका एक अलग मज़ा है फिल्मों का। और जहाँ तक थिएटर का सवाल है, वो एक नॉन प्रोफेशनल तौर पर मुझे थिएटर बेहद पसंद है क्योंकि थिएटर में आराम है, खुदसत है, कोई जल्दी नहीं है, और एक चीज़ को आप बाकायदा तीन चार महीने तक रिहर्सल कर रिलीज कर सकते हैं, उसके बाद आप रिलीज कर सकते हैं, ऑडियंस के सामने बैठे हैं। तो हर चीज़ का एक अलग पहलू है, हर एक अलग मज़ा है। तो प्रोफेशनली जिस तरह मैंने कहा शायद प्रेफरेंस मैं टी वी को दूँ, और जहाँ तक मज़े का सवाल है तो शायद प्रेफरेंस को मैं सिनेमा को दूँ, और जहाँ तक पर्सनल एक तसल्ली या सेटिस्फेक्शन का सवाल है तब मैं शायद प्रेफरेंस दूँ टी वी को।
3: तो आप जो है अपने ही बाइक के अपने बढ़ने से परेशान कर दिया।
1: अब और क्या करते हो दोस्त, क्या है कि वहाँ से निकलने का रास्ता में और कोई मिल नहीं रहा था, और वो बेचारा इतना परेशान था कि उसके दिमाग में एक भी बात नहीं आ रही थी, या वो फ्लाइट को कभी आगे की जा रहे थे तो कभी पीछे, जिससे उसको साया कभी बढ़ रहा था तो कभी घट रहा था।
4: आपने कभी अपने साये को देखते बच्चे देखा?
1: मैडम हम दूसरों के सायों को नापते रहते

बिजली को ऐसे रूप में देखना पसंद नहीं करती, तो उससे मुझको एक अंदाजा मिला कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है कि कैरेक्टर या किरदार जो है दिलाव जो है वो अपने अपनी निजी जिंदगी के ऊपर हावी हो जाए। लेकिन अंत में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये जरूर है कि आदमी जब कोई किरदार निभाता है तो वो अपनी निजी जिंदगी से कुछ ऐसे पहलू कुछ ऐसी बातें निकाल कर उस किरदार के अंदर डालने की कोशिश करता है। तो ये जरूर है कि केशव कल्फी का जो किरदार है मेरे अंदर, जब मैंने वो शुरू किया था कैरेक्टर, तो मेरे अंदर कुछ

0: कम से कम 50-60 उसके शोज किए हैं और वो प्ले मुझको बेहद पसंद है। वेटिंग फॉर गॉड
1: संगीत में अपनी दिलचस्पी के बारे में टॉम वॉल्टर ने विविध भारती को अपने इंटरव्यू में ये बात बताई थी।
0: क्लासिकल संगीत से कोई खास मेरा रिश्ता नहीं रहा है, ना तो हिंदुस्तानी क्लासिकल ना तो इंग्लिश क्लासिकल, लेकिन हाँ पुराने, अब तो खैर पुराने उस टाइम सुनाई थे हमारे लिए, पुराने फिल्मी गीत मुझे बेहद पसंद है। और जहाँ तक इंग्लिश म्यूजिक का संबंध है तो बीटल्स के गाने, फिर ईगल्स के गाने, उससे पहले एक और फोक ग्रुप था पीटर पॉल एंड मैरी, उनके गाने ये मुझे आज तक मुझे बेहद पसंद है। इंडियन म्यूजिक में हाल ही में कुछ पिछले मैं देख रहा हूँ एक दो साल से, कहीं से मन में कहाँ से मेरे अंदर एक क्लासिकल म्यूजिक में एक दिलचस्पी पैदा

इसलिए कुछ तरह के प्रोग्राम को सुना और मेरी आंखों में तो आंसू आ गए सुनते सुनते। तो शायद इस बुढ़ापे में क्लासिकल म्यूजिक में भी एक दिलचस्पी मेरे अंदर पैदा हो रही है, लेकिन अब तक जो है मेरे इंटरेस्ट रहा है या तो फोक म्यूजिक में या तो पॉपुलर म्यूजिक में, रॉक में इंटरेस्ट नहीं है। तो फिल्मी गाने बस वही हमारे तीन जो सितारे हैं, किशोर जी, रफी साहब और मुकेश जी, उनके गाने तो घंटों तक या मेरे मैं दिनों महीनों तक सुन सकता हूँ। मैं सच बताऊँ कुछ मुझके कारण क्या है मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आजकल जब गाने मैं सुनता हूँ तो मुझको बस बस सोचना पड़ता है कि आवाज़ किसकी है। शायद मेरे अंदर दृष्टि कम हो गई या शायद कुछ आवाज़ें जो हैं वो सेम टू सेम होती जा रही हैं। मुश्किल है, मुझको याद है हम आशिकी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जिसमें फर्स्ट टाइम कुमार सानू ने कुछ गाने स्पीच किए थे, मैंने उनकी आवाज़ पहली बार सुनी थी, फिर नया नया था वो, तो मैंने प्रोड्यूसर से कहा कि ये जो आदमी है कुमार सानू ये बहुत सक्सेसफुल रहेगा। उस टाइम में कुमार सानू की आवाज़ मुझको बहुत अच्छी लगी। बाकी जो नए नए हैं वो अब क्या बताऊँ मैं, कुछ उनकी आवाज़ को पहचानने में मुझको तकलीफ, शायद इसलिए कि मैं पुराने ज़माने में खोया रहता हूँ। ये गीत मुझे इतना पसंद है कि

अपना पुकारता है नाम लेकर, अपना ही नाम खास हो जाता है हमारे लिए। इंतजार करना पड़ता है उस मासूम लड़की के लिए, पर वो लम्हा जब आता है जिंदगी में तो बीतता नहीं, वो ठहर जाता है, वो लम्हा बर्फ हो जाता है हमेशा के लिए। उस लम्हे की खुशबू बहका देती है जिंदगी को, और इज्जत

जब बच जाते हैं लहरों से, जैसे किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर होता है एहसास कि कितना विराट है ये संसार और कितने छोटे हैं हम।

वो तुमसे किसके तेज बचे बिना गवाए वो किन्नी दारों की बहादुरी सबके सामने अपनी बातों के खिलाफ कितने शरारती थे ना हम हमेशा से अपनी खुदा ये बजा पुराना कायदा और ये चल पड़े हम

down

कौन सी लहरी थी से जिन पर लोग परदेश जाते हैं खूबसूरत जगहों पर दुनिया चीजों के प्यार में मुब्तिला हो जाती है। जिंदगी वो है जिसमें चीजें नहीं जज्बात जमा किए जाए। जिंदगी वो है जिसमें हो

खूबसूरत लगने लगती है हमें फोटो। एक निगाह एक मुस्कान ही बदल सकती है किसी की दुनिया। प्यार हो जाना जीवन की सबसे खूबसूरत घटना है और प्यार को जीना सबसे खूबसूरत बना देता है जिंदगी को। आओ हम इस संगीन दुनिया में

ਉੱਤੇ ਸੇਵ ਕਰੋ।

करूंगी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि।